Radio 94.1. Siamo in Pantesare da poco. इसको पहला कि प्रोग्राम की अगली शुरुआत करिए मैं सोचा भी थोड़ा सा डिवाइड

0: फीमेल फैमिली फिजिशियन दा स्वागत करता है।
1: गर्म जोशी समझदारी ते प्यार नाल ओ तुहाडे परिवार नु कंफर्टेबल ते वेल केयर्ड फील करवाउण लई हमेशा तैयार है।
0: हुण तुसी उहनां नाल इंग्लिश, हिंदी, उर्दू ते पंजाबी विच वी गलबात कर सकदे हो ताकि तुसी घर वर्गा एहसास महसूस करो।
1: नवे पेशेंट्स हुण एक्सेप्ट हो रहे ने, अज ही अपने परिवार लई फैमिली डॉक्टर सिक्योर करो।
0: कॉल करो 587-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक। वॉक-इन्स सवेरे 9 बजे तो शाम 6 बजे तक।
1: सानू मिलो किंग्स व्यू बुलेवर्ड ते या कॉल करो 587-360-6890।
0: थोड़े परिवार दी सेहत साड़ी जिम्मेदारी।
2: हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब।

0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0303-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है
1: मिलिए डॉक्टर मखर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देती है मुकम्मल केयर
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी
3: नमस्ते सत श्री अकाल आदाब लिसनिंग टू कैलगरीज मोस्ट पॉपुलर रेडियो रेडियो सबरम 94.7 FM
4: Take your business beyond walls and straight to your audience. Sabrong Radio now comes live to your location, bringing energy, excitement, and real-time engagement. From store openings to special events, from product launches to community celebrations, we don't just promote your business, we create an experience your customers remember. Our team reaches your venue, connects with the crowd, and broadcasts your brand across a wide 250-kilometer network. More visibility, more trust, more customers. Let your business be seen, heard, and celebrated. Book your live promotion today with Sabrong Radio. Your brand, on air and on ground. Visit sabrong.ca or call 403-400-0203.
0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है
1: मिलिए डॉक्टर मखर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देती है मुकम्मल केयर
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी

0: ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ।
1: ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ? ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 4 ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
2: गर्मजोशी, समझदारी ते प्यार नाल ओ तुहाडे परिवार नु कंफर्टेबल ते वेल केयर्ड फील करवाउन लई हमेशा तैयार है।
0: हुन तुसी उना नाल इंग्लिश, हिंदी, उर्दू ते पंजाबी विच वी गलबात कर सकदे हो, ताकि तुसी घर वर्गा एहसास महसूस करो।
2: नवे पेशेंट्स हुन एक्सेप्ट हो रहे ने, आज ही अपने परिवार लई फैमिली डॉक्टर सिक्योर करो।
0: कॉल करो 5873606890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक, वॉक-इन्स सवेरे 9 बजे तो शाम 6 बजे तक।
2: सानू मिलो किंग्स व्यू बुलेवर्ड ते या कॉल करो 5873606890।

0: ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0200-403-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मुकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। लिसनिंग टू कंट्रीज मोस्ट पॉपुलर रेडियो रेडियो
4: Take your business beyond walls and straight to your audience. Sabrong Radio now comes live to your location, bringing energy, excitement, and real-time engagement. From store openings to special events, from product launches to community celebrations, we don't just promote your business, we create an experience your customers remember. Our team reaches your venue, connects with the crowd, and broadcasts your brand across a wide 250-kilometer network. More visibility, more trust, more customers. Let your business be seen, heard, and celebrated. Book your live promotion today with Sabrong Radio. Your brand, on air and on ground. Visit sabrong.ca or call 403-400-0203.
5: फीमेल फैमिली फिजिशियन दा स्वागत करता है।
6: गर्मजोशी, समझदारी ते प्यार नाल ओ तुहाडे परिवार नु कंफर्टेबल ते वेल केयर्ड फील करवाउन लई हमेशा तैयार है।
5: हुन तुसी उना नाल इंग्लिश, हिंदी, उर्दू ते पंजाबी विच वी गलबात कर सकदे हो ताकि तुसी घर वर्गा एहसास महसूस करो।
6: नवे पेशेंट्स हुन एक्सेप्ट हो रहे ने, अज ही अपने परिवार लई फैमिली डॉक्टर सिक्योर करो।
5: कॉल करो 587-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक। वॉक-इन्स सवेरे 9 बजे तो शाम 6 बजे तक।
6: सानू मिलो किंग्स व्यू बुलेवर्ड ते या कॉल करो 587-360-6890।
5: थोड़े परिवार दी सेहत साड़ी जिम्मेदारी।
3: हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब।

0: ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: नमस्ते सत श्री अकाल आदा लिसनिंग टू कैलगरीज मोस्ट पॉपुलर रेडियो रेडियो सबरा 94.7 FM।
4: Take your business beyond walls and straight to your audience. Sabrong Radio now comes live to your location, bringing energy, excitement, and real-time engagement. From store opening

0: and special events. From product launches to community celebrations, we don't just promote your business. We create an experience your customers remember. Our team reaches your venue, connects with the crowd, and broadcasts your brand across a wide 250-kilometer network. More visibility, more trust, more customers. Let your business be seen, heard, and celebrated. Book your live promotion today with Sebrang Radio. Your brand, on air and on ground. Visit sebrang.ca or call 403-400-0203.
1: ਸਬਰੰਗ ਰੇਡੀਓ 94.7 ਉਤੇ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਡੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਰਫੀਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਟ ਸਨੋ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਠੰਡੀ ਦੁਪਹਿਰ ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਪ੍ਰਾਚੀ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਪ੍ਰਾਚੀ ਜੀ ਟੂ ਸਬਰੰਗ ਰੇਡੀਓ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਕੈਲਗਰੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਹਮਾਰੇ ਖੁਦ ਕੇ ਯਹਾਂ ਕੇ ਅੱਜ ਦੋਸਤ ਜੋ ਹੈ ਸਬੂ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਜੋ ਕਿ कम्युनिटी की जानी मानी हस्ती हैं और बड़े सेवा भी करते हैं काफी जगह पे आप इनको देख रहते हो ऑल द टाइम और आज ये क्योंकि शास्त्री इंस्टीट्यूट के साथ भी जुड़े हुए हैं तो मैं चाहूंगा पहले थोड़ी थोड़ी इंट्रोडक्शन जो है वहां से शुरुआत करते हैं और माइक को पास में ला के और उसके बाद फिर बाकी की बातें जो शुरू करते हैं सो जी प्राची जी पहले तो आपसे ही शुरू करेंगे ठीक है तो आप थोड़ी सी हमें अपने बारे में बताइए क्योंकि शास्त्री इंस्टीट्यूट के बारे में और आपके बारे में आप कब से जुड़ी हैं इनके साथ और इंस्टीट्यूट करता क्या जी
2: थैंक यू सो मच आपने इनवाइट किया आपके आपके मीडियम से हम बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाएंगे और शास्त्री इंस्टीट्यूट के बारे में बता पाएंगे मेरा नाम प्राची कौल है और मैं शास्त्री इंडो कैनेडियन इंस्टीट्यूट के इंडिया ऑपरेशंस देखती हूँ आई एम डायरेक्टर देयर एंड आज कैलगरी में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में शास्त्री इंडो कैनेडियन इंस्टीट्यूट का ऑफिस है वी आर हाउस देयर फॉर वेरी मेनी ईयर्स आई थिंक अराउंड 30 ईयर्स वी आर बीइंग स्टेशन हियर एंड शास्त्री इंस्टीट्यूट एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है ऑलमोस्ट 60 सालों से 6 दशकों से अगर हम हिंदी में कहें तो हम लोग काम कर रहे हैं और हमारा काम है एज यू कॉल इट पीपल टू पीपल कनेक्ट हमने To begin with, teen universities, University of British Columbia, University of Toronto, and McGill University ne hume found kiya tha. Bahut saalon tak, lagbhag 25 saalon tak hamara office McGill University mein tha. Aur ye jo naam aap dekhte hain Shastri, it comes from Shri Lal Bahadur Shastri, jo ki hamare second prime minister the India ke. Aur wo Canada aaye hue the on a state visit. On the invitation of Lester B. Pearson, the Nobel laureate, जो Canadian Prime Minister थे हमारे और उस visit के दौरान उनको जो famous McGill University है वहाँ पे convocation speech देनी थी and ये हुआ था 1966 की बात है ये उस समय पे जब वो McGill University में convocation speech दे रहे थे तो उन्होंने अपनी speech में ये बात कही कि एक ऐसा platform होना चाहिए जिससे कैनेडियन दोस्त जो उनके हैं उनको इंडिया के बारे में ज्यादा जानकारी मिले क्योंकि कनाडा इंडिया की तभी इंडिपेंडेंस हुई थी इंडिया वाज अ यंग कंट्री और देयर वाज सो मच अलाइनमेंट जो हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज थे जो वो बहुत मिलते थे तो उनको लगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसमें दोनों कंट्रीज के लोग एक दूसरे के बारे में जान पाएं और पीपल टू पीपल कनेक्ट को बढ़ावा मिले उनकी ये बात हमारे लेस्टर बी पियर्सन साहब को बहुत पसंद आई और ये भी मैं कहना चाहूंगी कि बहुत छोटे से टाइम में वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए और उसके बाद बहुत ही
1: बड़ी अच्छी रिलेशनशिप की आप बता रहे हो जैसे हम आजकल हमारे रिलेशन जो है इंडिया कनाडा के इतने अच्छे होने जा रहे हैं या हो रहे हैं सो इट्स काइंड ऑफ उस टाइम पे इतने अच्छे थे बीच में थोड़ा सा कई कारणों की वजह से हमारा थोड़ा सा डाउनफॉल आया बट अभी हम उसी डायरेक्शन में दोबारा जा रहे हैं
2: और हम लोग बहुत एस्पायरिंग है कि हम बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए टू बाउंस बैक फ्रॉम वेयर वी आर वेयर वी वर एक्चुअली तो गोइंग बैक टू दैट यू नो उसके तुरंत बाद ही शास्त्री जी वापस गए और हम सबको पता है कि एक बहुत दुखद तरीके से उनकी मृत्यु हो गई और जो हमारे लेस्टर बी पियर्सन साहब थे उन्होंने उनके ऑनर

0: में ये इंस्टीट्यूट फाउंड किया इन कनाडा एंड ही नेम्ड इट एज शास्त्री इंडो कैनेडियन इंस्टीट्यूट. अर्लियर आई थिंक इट वाज प्लान्ड टू बी कॉल्ड एज शास्त्री पियर्सन इंस्टीट्यूट बट एज एन ऑनर इन द होमेज ऑफ श्री शास्त्री जी इसका नाम शास्त्री इंस्टीट्यूट शास्त्री जी के नाम पे पड़ा. हम लोग जैसे मैंने कहा
1: अच्छी बात है जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दें भी शास्त्री जी जो थे वो इतनी बेदाग छवि वाले इंसान थे. उनके बारे में जितनी भी कोई ऑनेस्टी की या कोई भी क्लीनलीनेस की बात करते हैं कि पॉलिटिक्स के अंदर तो शायद
0: बहुत ही ईमानदार छवि के इंसान थे वो और बहुत ही हम्बल थे वो. और उनका एक बहुत प्रसिद्ध नारा है जय जवान जय किसान. और हम उनकी इंटीग्रिटी से ही अपनी स्ट्रेंथ लेते हैं क्योंकि जो उनकी इमेज थी और जितना कमिटमेंट था उनका अपने देश के लिए वही कमिटमेंट हमने अडॉप्ट किया इंडिया और कनाडा दो देशों को साथ में लाने के लिए. तो ऐसे
1: उनकी मैं एक बात और बता दूं मुझे याद है जो जब क्राइसिस में थे हम फूड क्राइसिस थे.
0: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल
1: तो
0: बताइए वो बात.
1: एक बार कहा था कि मैं अपना फूड कम कर रहा हूँ और आप भी एक एक टाइम का फूड
0: हाँ,
1: कम करें.
0: और वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो हम लोग बहुत फास्ट करते हैं और उन्होंने कहा था मैं आज से ट्यूसडे का फास्ट शुरू करूंगा और एक दिन मैं अन्न नहीं लूंगा. तो उससे जो फूड सिक्योरिटी थी हमने बहुत कुछ अचीव करी और बहुत लोगों को उन्होंने इनकरेज किया कि हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है कि हफ्ते में एक दिन आप खाना ना खाएं. तो वैसे लोग बहुत कम होते हैं और हमें प्राउड था कि हम उस एक महान व्यक्ति के नाम से जुड़े हुए थे. ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी के नाम को उतना की इज्जत को बरकरार रख पाना. सो वी हैव ट्राइड दैट.
1: डेफिनेटली बड़ा अच्छा आपका इनिशिएटिव है. और जब शास्त्री नाम यूज सोचते हैं हमारे दिमाग में दुनिया में तो कोई भी बंदा जो इंडियन ओरिजिन का है तो उसको पता भी किस शास्त्री के बारे में बात हो रही
0: है.
1: कोई दूसरा तीसरा कोई शास्त्री नहीं है, एक ही शास्त्री है जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं. इवन तो गांधी जी के साथ उनका बर्थडे था बट कई बार लोग वहां पे ये सोच रहे थे अभी ये गांधी जयंती है बट शास्त्री जी का जो जयंती होती है वो मुझे लगता है जो उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया रियल वर्ल्ड और रियल सेंस में वो एक उसकी कोई तुलना नहीं कर सकते हम.
0: बिल्कुल वो किसी पार्टी से उनका अटैचमेंट कभी भी पूरी दुनिया के लिए किसी एक पार्टी के साथ नहीं रहा. वो एक ऐसी छवि के मालिक थे कि उनको एज ए इंडियन नेशनल के जैसे हम बहुत इज्जत करते आए हैं.
1: जी. तो होना भी ऐसे एक्चुअली जब हम पॉलिटिकली पार्टी की तरफ से रन करते हैं और एक बार आपने जब लीडरशिप का रोल मिल गया तो आप कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं, कंट्री के प्रेसिडेंट हैं या स्टेट के जो भी हैं, नॉट की कुछ एक लोगों के नहीं होते. उन्होंने प्रूव भी करके दिखाया और अपनी ईमानदारी की वजह से आज हम उनके बारे में बात कर रहे हैं. उसी की वजह से ही ये इंस्टीट्यूट बन पाया. ऐसे कहने को तो कोई भी प्राइम मिनिस्टर कोई भी प्रेसिडेंट एक दूसरे से 50-100 बातें करते हैं और वादे आते हैं जाते हैं, कोई केयर नहीं करता. बट ये जो इंस्टीट्यूट फॉर्म हुआ है ये हमारे जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर पियर्सन की बात आप कर रहे हैं कैनेडियन जो और लाल बहादुर शास्त्री जी के ऑनर में उन्होंने किया तो ये ट्रू एक उनको एक ट्रू जिसको कहते हैं एक अच्छे इंसान ऑनर. हाँ जी. और उनको लगा कि भी ये इंसान जो है जिससे मैं बात कर रहा हूँ इसकी बात की वैल्यू है. इट्स नॉट की भी इसने बात कर दी तो आई गई कर देनी है और अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई. बट
0: तो हम लोगों ने ऑफिस यहाँ पे शुरू किया 1968 में और दोनों गवर्नमेंट इसके ऊपर एग्री करे और एक महीने के अंदर हमारा दिल्ली में ऑफिस खुल गया. तो हम लोगों के दो ऑफिसेज हैं राइट नाउ जैसे मैंने बोला कैलगरी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी के अंदर और एक दिल्ली में हमारा ऑफिस है. तो हमने इतने 6 दशकों में क्या काम किया, बहुत काम किया हमने. हमारा कंट्रीब्यूशन आई थिंक बायलैटरल कॉरिडोर पे जिसको हम कह सकते हैं कि मैंडेटेड बाय बोथ द गवर्नमेंट्स दिस इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन. दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ चेंबर्स, दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव आई थिंक क्रॉप्ड अप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. पर जो एक ट्रू सेंस में बायलैटरल ऑर्गेनाइजेशन थी वो सिर्फ हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी और मैंने जैसे बताया कि तीन यूनिवर्सिटीज के साथ हमने अपना काम शुरू किया था लेकिन वो कारवा बढ़ता गया धीरे-धीरे हमारे काम से लोग बहुत इंप्रेस होते गए हमारा कंट्रीब्यूशन दिखता गया दोनों तरफ इंडिया में भी और कनाडा में भी और 2004-05 में एक ऐसा मोड़ आया जहां पर जब तक कि

0: कनेडियन यूनिवर्सिटीज जो थी वो हमारे नेटवर्क में शामिल थी. ऐसा नहीं है कि कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियल इंडिया से नहीं आ रहा था, वो इक्वल टर्म्स में आ रहा था, दोनों गवर्नमेंट इक्वली सपोर्ट कर रही थी. पर 2004-05 में और गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने कई बार हम लोगों को इंडियन गवर्नमेंट को इन्वाइट किया कि आप भी गवर्नेंस का पार्ट बनिए, पर उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया. पर 2004-05 में इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, हम भी इसमें शामिल होना चाहते हैं और आपके साथ कंस्ट्रक्टिवली यू नो इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाएंगे. तो रीस्ट्रक्चरिंग का मौका आया और वी बिकेम 2004-05 में एंड वी बिकेम ट्रूली ट्रूली बायलेटरल एट दैट टाइम, विच मीन्स हमारा जो बोर्ड है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जिसमें तीन मेंबर इंडिया से होते हैं, तीन कनाडा से होते हैं, जो प्रेसिडेंसी होती है वो रोटेट होती है बिटवीन इंडिया एंड कनाडा. तो एक उस तरह का गवर्निंग स्ट्रक्चर हम लोगों ने फॉर्म किया और फिर हमने अपनी मेंबरशिप इंडियन इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटी के लिए भी खोल दी. पहले ही साल में हमें लगभग 50 इंस्टीट्यूशंस ने ज्वाइन किया. अगर आप इंडिया से वाकिफ हैं तो आपको पता होगा कि IITs कितने प्रेस्टीजियस हैं. तो पहले ही कॉल में हमें पांचों जो फर्स्ट जनरेशन IITs हैं उन्होंने ज्वाइन कर लिया. सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लाइक JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, यू नेम अ गुड यूनिवर्सिटी, दे बिकम पार्ट ऑफ अस. एंड लॉ यूनिवर्सिटीज जो इंडिया की उस समय बन रही थी, उस सब ने शास्त्री इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप ले ली एंड वी स्टार्टेड वर्किंग. आज के टाइम पे हमारे पास 200 मेंबर्स हैं एंड इंडिया और कनाडा के मिला के इंडिया में अराउंड 32-35 हैं.
1: नहीं, कनाडा में,
0: सॉरी, कनाडा में. और थैंक यू साबू फॉर कनेक्टिंग मी. एंड इंडिया में अराउंड 170. तो एक बहुत निश नेटवर्क हमने क्रिएट किया है जिनके बीच में हम पार्टनरशिप्स और कोलैबोरेशन करवाते हैं. तो
2: IIT की जैसे आपने कहा ना भी, तो IIT जो है इसके बारे में, क्योंकि हमारे स्टूडियो पे ब्रेक का समय हो गया. ब्रेक लेके बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्
1: The time is 2 p.m. You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.

0: Sir, quite very qualified person. Also, he is managing all the public relation. So he's the right person for the public relation for the organization. And इन्होंने इतने दिनों से जब से ये कैलगरी में आए हैं, मूव हुए हैं, इन्होंने इस organization के साथ जुड़े हुए हैं और 15 साल या 17 साल आई थी.
1: 16 साल.
0: तो मेरे से थोड़ा सा कम, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा.
2: हाँ जी, जब हमने रेडियो ये शुरू किया था, शुरू तो 1998 में हुआ था, पर मैंने 2010 में टेप ओवर किया था तब से ही. और साबु को आई थिंक मैं उससे भी पहले से जानता हूँ, क्योंकि हमारे
1: स्कूल के कनेक्शन थे.
2: हाँ जी, तो ये उस वजह से हमारा जो दोस्त हैं, लोग तो एम्बेसडर बनाए कुछ भी बनाए, हमारे तो दोस्त वैसे ही
0: बिल्कुल, वो सबके दोस्त हैं.
2: तो इसीलिए बड़ा मजा आता है, और जब भी हम मिलते हैं, बातें करते हैं, तो बड़ा अच्छी लेवल की हमारी डिस्कशन होती है.
0: जी,
2: सो जी,
1: हाँ, मुझे व्हाट आई वांट टू से इज दैट थैंक यू राजेश जी, आपने यहाँ पे इनवाइट किया, खुशी हुई है हमको. प्राची जी ने शास्त्री के बारे में काफी कुछ कहा है. What I want to add is, हमने बोला था, प्राची mentioned about Lester Pearson, या उनका उनका उनके बीच में बातचीत हुआ और ये institution form हुआ. तो मेरा role में ये भी है कि हम कॉन्फ्रेंस करें, एंगेजिंग इंडिया एंगेजिंग कैनेडा कॉन्फ्रेंस, काफ़ी 30 एटलीस्ट मिनिमम 30 इंक्लूडिंग द फर्स्ट कैनेडा इंडिया हायर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हमने किया कार्लटन यूनिवर्सिटी में. बट इसके बीच में एक इवेंट हमने पार्लियामेंट में भी किया, हम टोटल 5 इवेंट पार्लियामेंट में किया, उसके बीच में एक इवेंट पार्लियामेंट में किया, जहाँ पे वो रूम में, जिस रूम हमको अलॉट किया था, वहाँ पे शास्त्री जी का एक प्लैक था. तो 1965 में वो उस रूम में खड़ा होके उसने उसका स्पीच दिया था, तो वही मिला. यही ऐड करना है, और बड़ा इमोशनल मोमेंट है हमारे लिए. मोर देन वर्क, हमारा हार्ट एंड सोल है शास्त्री इंस्टीट्यूट. एंड इसके अलावा और एक बात प्राची, आई डोंट वांट टू इंटरप्ट यू, बट एक चीज और कहना है कि हमें सपोर्ट ऑफकोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इज देयर, एंड प्लस यहाँ से ग्लोबल अफेयर्स कैनेडा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट है, दोनों हैं. वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वन, क्योंकि हम अल्बर्टा में हैं, ये भी कहना है कि 2023 में हमने अल्बर्टा गवर्नमेंट के साथ MOU साइन किया था कैलगरी में मैकडोगल हॉल में. एंड उसके बाद उनसे हमको फंडिंग मिली, जिससे वी सेंट ऑलमोस्ट 18 स्टूडेंट्स ऑन वर्क इंटर्नशिप्स टू इंडिया, टू IITs, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, MNIT जयपुर, उनका काफ़ी. एंड ये बच्चे जो है, ये दे केम from across Alberta, just not the universities, but from deep northern Alberta, जिनको Canadian experience मिला, Indian experience मिला, because if it was not for Shastri, वो कभी India देखते नहीं थे. तो ये लोग हमारा future ambassador होगा. And अभी जो जुलाई में, we will have another 12 of them going to India again on work internship. So काफी अच्छा काम प्रोविंशियल लेवल में भी कर रहा है, इंक्लूडिंग Saskatchewan टू. Saskatchewan का प्रीमियर जो है स्कॉट मो हमारे ऑफिस आए थे एक साल दो साल पहले.
0: ही कीप्स कमिंग, ही इज द ट्रू फ्रेंड. अगर आप प्रोविंशियल एंगेजमेंट की बात करें, तो इवन लास्ट 3 इयर्स में जब देयर वाज टर्मोइल, वी हैड really rough times. लेकिन उस समय पे भी स्कॉट मो जो प्रीमियर हैं, वो इंडिया आते रहे और वो इंडिया हमारे कंट्री के साथ बहुत क्लोज हैं, और ही वाज द बीरर ऑफ कम्युनिकेटर इन बिटवीन द टू गवर्नमेंट्स. तो उनका रोल बहुत अहम रहा है. वो 3 साल आए और तीनों साल हम लोगों ने उनके साथ कोलैबोरेट किया. प्रायोरिटी एरियाज जो डिफाइंड हुए हैं, उनके ऊपर हमने वहाँ पे कॉन्फ्रेंस करवाई, वर्कशॉप करवाई. आप लोगों को शायद मालूम है, वन हेल्थ क्लस्टर हमने जो लॉन्च किया था, वो स्कॉट मोन, प्रीमियर स्कॉट मोन ने ही लॉन्च किया था वहाँ पे. और हम बहुत क्लोजली वर्क कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ Saskatchewan के साथ ऑन रिसेंटली अनाउंस्ड सेंटर फॉर एक्सलेंस ऑन प्लांट प्रोटीन. ये इंडियन गवर्नमेंट और कनेडियन गवर्नमेंट ने ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरियल विजिट ऑफ پرائم منسٹر کارنی اناؤنس کیا تھا, تو ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں.
2: ویری گڈ. آپ دونوں نے آئی آئی ٹی کے بارے میں جیسے بات کی

0: area. Mm-hmm. So that's a contribution that we have made.
1: और education से ऊपर तो कुछ भी नहीं है.
0: कुछ भी नहीं है. जी. Quebec province के साथ हमने उनके differential tuition fee program में हिस्सा लिया, जिसमें हर साल लगभग 30 बच्चे grad level पे, like masters and PhD के लिए, उनको हम domestic tuition fee में admission मिलता था. और वो क्यूबेक में यूनिवर्सिटीज में 9 यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस जो उनके आइडेंटिफाइड थे वहां अपनी पढ़ाई करते थे. इट वाज अ बिग सपोर्ट फॉर देम.
1: एंड ये आपने बताया अभी 100 कितने इंस्टीट्यूट अभी इसका हिस्सा हैं.
2: इंडिया से 100 रफली 150 और 170 और कनाडा से राइट नाउ
0: 34
1: ऑलमोस्ट 200
2: ऑलमोस्ट 200 प्लस
1: इतने हैं. तो वो प्रोसीजर क्या होता है अगर किसी को इसके साथ जुड़ना हो या मेंबरशिप का कैसे.
0: ओके सो वो बहुत सिंपल है, लेकिन क्योंकि एक निच नेटवर्क है हमारा तो हम बहुत केयरफुल हैं कि हम हर एक को इसका हम बहुत को ऐसा नहीं है कि हम एक्सक्लूसिव हैं अप्रोच में, बट वी वांट टू शेयर दैट होल्ड दैट रिस्पांसिबिलिटी एट हाई कि जो नेटवर्क हम बना रहे हैं वो ट्राइड एंड टेस्टेड हो, वैल्यू एडिशन कर पाए एक दूसरे के लिए. तो जब कोई इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी को हमारा मेंबर बनना होता है तो जब वो हमको अप्रोच करते हैं तो उसके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म उनको भरना होता है. वो हमारा एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसको रिव्यू करती है बेस्ड ऑन जैसे इंडिया में की अगर मैं बात करूं तो उनको 10 साल तक एस्टैब्लिश होना चाहिए, उनको नेशनल एक्रेडिटेशन जो है उसमें एटलीस्ट ए ग्रेड पे होना चाहिए, जो नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ रैंकिंग है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की उसमें उनको टॉप 100 में होना चाहिए, और अगर सब्जेक्ट वाइज या डिसिप्लिन वाइज देखें तो टॉप 50 इंस्टीट्यूशंस में उनका नाम होना चाहिए, तब वो एलिजिबल होते हैं टू बिकम द मेंबर. और उन सब
1: थापर इंस्टीट्यूट भी है पटियाला में, भी मेंबर है
0: थापर हमारा मेंबर है जी.
1: तो भाई वहां पे पढ़ाती थी आने से पहले.
0: अच्छा अच्छा बहुत
1: हम वहीं से इधर आए थे
0: जी जी. तो ऐसे वो मेंबरशिप उनकी रिक्वेस्ट हम एक्सेप्ट करते हैं. सेम इज एट द कैनेडियन एंड, यूनिवर्सिटीज हमें लिखती हैं और उसके उनके एप्लीकेशन को एग्जीक्यूटिव काउंसिल असेस करती है और फिर हम उनको बताते हैं कि आप हमारा मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं.
1: तो उसमें जो बच्चा इन सब इंस्टीट्यूट्स के अंदर पढ़ता है तो उसको क्या बेनिफिट होते हैं, क्या तरीका होता है अगर उनको कनाडा में आके पढ़ना है या यहाँ से कनाडा जाना, उसका कोई प्रोसीजर है कि यहाँ
0: या नहीं. तो उसमें पहली बात तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि हम फुल टाइम किसी एजुकेशनल प्रोग्राम में बच्चों को नहीं लाते. एंड हमारा जो काम है वो एकेडमिया एंड रिसर्च फ्रेटर्निटी के सारे सेगमेंट्स को कवर करता है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम अंडरग्रेड स्टूडेंट टू सीनियर मोस्ट प्रोफेसर तक, उन सब के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ प्रोग्राम होता है. ये सब प्रोग्राम हम जो करते रहे हैं वो इंडियन एंड कनेडियन गवर्नमेंट के फंडिंग से करते आए हैं, और हम डिफरेंट तरीके के प्रोग्राम्स डिवाइस करते हैं जिसमें बहुत सारे इंटर्नशिप्स हैं, फेलोशिप्स हैं, मोबिलिटी ग्रांट्स हैं, फैकल्टी के एनरिचमेंट और रिसर्च के प्रोग्राम्स हैं, कोलैबोरेटिव रिसर्च हैं जिसमें टीम्स फॉर्म करके इंडिया एंड कनाडा के साथ वो एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट प्रपोज करते हैं शास्त्री को. सो हमारी एक सीड ग्रांट्स होती हैं जिससे वो काम करना शुरू करते हैं, देन दे बिकम एलिजिबल टू अप्लाई फॉर सो वेरी मेनी ग्रांट्स इन वेरियस फंडिंग एजेंसीज. तो हमारा एक प्रोसेस होता है प्रोग्राम का, जब प्रोग्राम हम डिवाइस कर लेते हैं वो अप्रूव हो जाता है तो उसको हम अनाउंस करते हैं, और उसमें अगर वो स्टूडेंट्स के लिए है तो स्टूडेंट्स उसमें अप्लाई करते हैं. देन वी हैव मल्टी टीयर इवैल्यूएशन प्रोसेस, इट्स वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव. तो मान लीजिए 200 एप्लीकेशन किसी एक प्रोग्राम के लिए आए हैं, उसमें हमारे पास सिर्फ 10 स्लॉट्स हैं देने के लिए, तो डिफरेंट प्रोसेसेस के बाद वो लोग हम सेलेक्ट करते हैं कैंडिडेट्स, और उनको फिर हम बताते हैं कि आपको ये अवार्ड मिला है, उनके साथ ग्रांट साइन करते हैं, एग्रीमेंट साइन करते हैं. फिर अगर वो कैनेडा के हैं और उनको इंडिया जाना है तो उनके प्रोग्राम को हम सेट करते हैं, और इसी तरह से काम आगे बढ़ता है. तो सेम इज विद फैकल्टी मेंबर्स एंड रिसर्चर्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड जस्ट लाइक टू मेंशन, आई शुड नॉट फॉरगेट दिस, कि एक तो हो गया टैंजिबल बेनिफिट. तो ये टैंजिबल है कि आपने किसी के ऊपर $15,000 लगाए या आपने $50,000 लगाए, लेकिन देयर इज अ वर्ल्ड बियॉन्ड दिस, देयर इज अ वर्क बियॉन्ड इट फॉर शास्त्री. तो दूसरा होता है इनटैंजिबल बेनिफिट. इनटैंजिबल बेनिफिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, क्योंकि वो है फैसिलिटेशन. जब हमने पीपल टू पीपल की बात करी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई जो भी इंटरेस्टेड है इंडिया में

0: या कनाडा के बारे में जानने के अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानने के लिए उनको हम वो इन्फॉर्मेशन दे पाएं. मान लीजिए जैसे अभी आईआईटी तिरुपति वॉज हियर, उनके डायरेक्टर थे, तो उनका जो कोलैबोरेशन जो कनाडा में करवाया वो उसका श्रेय जाता है शास्त्री को, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि आप जितना हम हर जगह पे नहीं जा सकते, तो शास्त्री हैज बिकम दैट व्हीकल दैट हैज मूव्ड इन एंड आउट ऑफ इंडिया एंड कनाडा टू ब्रिंग पीपल एंड इंस्टीट्यूशंस टुगेदर. सो दैट्स हाउ वी ऑपरेट. तो वो इनटेंजिबल जो है उसको आप न्यूमरेट नहीं कर सकते हैं, पर वो बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली इन द टाइम्स जब जिसको कहते हैं डिप्लोमेसी 2.0. तो आपकी सरकार अगर थोड़ी सी नाराज है एक दूसरे से, तो ये हम जैसे लोगों का बहुत इम्पॉर्टेंट काम बन जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम ग्रीन रूम से बात करें, हम बैकग्राउंड क्रिएट करें जिसमें लोगों को इनफॉर्मली एक साथ लेकर आएं और एक अच्छा इन्वायरमेंट दें जिसमें कि बातचीत और डायलॉग को बूस्ट मिले.
1: वेरी नाइस, बड़ा अच्छा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जी प्राची जी, क्योंकि डायरेक्टर हैं इंडो कैनेडियन शास्त्री इंस्टीट्यूट, जो कि इंडिया के डायरेक्टर हैं बेसिकली, बट ओवरऑल मैं कहूंगा भी सारे डायरेक्टर हैं, ठीक है ना. तो यहाँ पे साबू जी जो है वो फाइनेंस ऑफिसर हैं. तो साबू आपके साथ और कौन कौन टीम में है यहाँ पे?
2: अच्छा, यहाँ पे फिलहाल हमारा प्रोग्राम ऑफिसर है महमूद अल्दीन, सो शी ऑल्सो ज्वाइंड ऑलमोस्ट द सेम टाइम इन 2010. इसके अलावा हम लोग एज पर रिक्वायरमेंट कोई स्टूडेंट इंटर्न किसी को ले लेता है टू हेल्प विथ अस, बट मोस्ट ऑफ द वर्क अभी ऐसा हुआ है कि हम लोग इंडिया में भी गए कुछ वर्क एंड वी वर्क टुगेदर एंड कुछ वॉलंटियर्स मिल जाता है. तो वैसा करते हम तो ऐसा है कि मेम्बर्स के बारे में महमूद अल्दीन देखता है, सो हर रोल इज प्रोग्राम एंड मेम्बर रिलेशंस, और मेरा रोल है फाइनेंस एंड पब्लिक रिलेशंस. सो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अभी नहीं है फिलहाल, लेकिन हम लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करके करते हैं.
0: इट्स अ स्मॉल टीम बट वेरी इफेक्टिव आई वुड से, एंड वी टेक पीपल ऑन बोर्ड एज एंड व्हेन देयर इज अ प्रोजेक्ट देयर इज वर्क, सो हम उनको हायर करते हैं और उनके साथ फिर काम करते हैं.
1: ठीक है, अच्छा, काफी अच्छा काम कर रहे हैं जी. जैसे आपने सुनी लिया सारी बातें भी कैसे शास्त्री इंस्टीट्यूट जो है वो काम करती है, और अभी तक 200 से ज्यादा मेंबर्स हैं. मेंबर्स का मतलब है इंस्टीट्यूट्स मेंबर्स हैं, हजारों हजारों स्टूडेंट्स होते हैं,
0: लाखों
1: में टोटल अगर देखा जाए तो इतने स्टूडेंट जो है उनके लिए एक्सेस है इंडिया और कनाडा के अंदर पढ़ने पढ़ाने का, रिसर्च करने का, और टीचर्स के पास भी ये सारी फैसिलिटी जो है रहती है.
0: जी जी बिल्कुल. और हम जैसे साबू ने अभी आप लोगों को बताया कि हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ काम करते हैं, ग्लोबल अफेयर्स के साथ काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं इस कॉरिडोर पे, वो सब हमारे एसोसिएट्स हैं, चाहे वो माईटैक्स हो या आईसी इम्पैक्ट हो, ये सब ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया के साथ काम करते हैं और वो इफेक्टिव हैं क्योंकि शास्त्री उनके साथ है.
1: बिल्कुल नहीं, बड़ा अच्छा मैसेज है जी, जो बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है. अगर किसी को इन्फॉर्मेशन लेनी हो या कुछ
0: जी,
1: कोई वेबसाइट, कोई फोन नंबर,
0: बिल्कुल www.shastriinstitute.com या आप उस पे .org उस पे आप लॉग इन कर सकते हैं डिटेल्स के लिए. आप उसमें साबू एंड महमूदा को कनाडा में, और मुझे आप कनेक्ट कर सकते हैं इंडिया के साइट में. हमारी एक और कलीग हैं, उनको भी आप लिख सकते हैं, उनका नाम है मिस संजू तनेजा, तो उनको भी आप लिख सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन.
1: बड़ा अच्छा मैसेज है जी. तो मैं बार बार ये माइक आगे पीछे इसलिए करता हूँ, एक तो हमारी आईडी दिखती है, और दूसरा थोड़ा ऐसा लगता है भी स्टूडियो में बैठ के भी हम जैसे लाइव इंटरव्यू का मजा लेते हैं, तो हमें अच्छा लगता है, तो दैट्स गुड. बट आई थिंक भी अच्छा आप लोगों को लगा होगा आज आके,
0: बहुत अच्छा लगा,
1: अच्छा लग रहा है आपसे बात करके,
0: बहुत अच्छा लगा. एंड मुझे लगता है कि आप रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो जिसकी रीच बहुत है. एक टाइम ऐसा होता था जब रेडियो ही था हमारी जिंदगी थी, और आपको याद नहीं हो मैं बहुत छोटी थी उस समय पे जब बिनाका गीतमाला आती थी, सयामी साहब, अमीन सयानी साहब आते थे, तबस्सुम आती थी, और वो बहुत सुंदर टाइम था, हम इतनी अच्छी तरीके से कनेक्टेड थे. अब रेडियो सिर्फ जब हम ट्रांजिट में होते हैं, कार में होते हैं कभी, तो हम रेडियो ऑन करते हैं. एंड आई गो बैक टू हमारे पुराना विविध भारती में, जब हम इंडिया की बात करें तो, और वो पुराने गाने और

0: सबको सुनते हैं उसके बीच-बीच में थोड़े-थोड़े जो बहुत इंफॉर्मेशन के कैप्सूल्ड प्रोग्राम्स होते थे वो बहुत अच्छे लगते थे एंड आई एम होपिंग कि जिस तरह से उस समय हमें फैसिनेट करा रेडियो बहुत पिकअप कर रहा है रिसेंटली इन लास्ट 10 इयर्स आई थिंक रेडियो हैज रिवाइव्ड इटसेल्फ बाय चेंजिंग यू नो जो हम कहते हैं रीस्ट्रक्चरिंग एंड री असेसिंग आवरसेल्फ वो जैसे शास्त्री में चल रहा है वैसे रेडियो इंडस्ट्री में भी चला और आप लोगों ने बहुत आगे आके बहुत सारी जिम्मेदारी भी उठाई है और उस जिम्मेदारी के ही तहत मैं सोचती हूं कि शायद आपके थ्रू हम ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और उनको इसका फायदा दे पाए
1: नहीं तो प्राची जब रेडियो के बारे में बोला मुझे ये भी याद आया एक फनी थिंग वो न्यूज़ वो गाने नहीं इवन तो वो जमाना का जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी अभी तक याद है बिना का लाइफ बॉय तो काफी काफी काफी
2: वो समय कुछ और था
1: कुछ और था
2: उस टाइम पे कुछ था नहीं हम लोगों के पास और जो लोग काम करते थे वो भी इतने बाकमाल होते थे हां जी उन्होंने अपनी शाप तो छोड़ी छोड़ी चाहे जितने मर्जी आज के जमाने में
0: एंकर्स आ जाएं जो भी आ जाएं उनका तो कोई मुकाबला नहीं है और वो जो कमेंट्री आती थी क्रिकेट की और जो वी यूज्ड टू बी ग्लूड टू रेडियो की छह गया
1: सुशील जोशी
0: सुशील जोशी की कमेंट्री
2: और रात को मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया में हमारे मैचेस शुरू होते थे इंग्लैंड में शुरू होते थे तो बॉल की जो टक की आवाज आती थी तो रात को ऊपर चढ़ जाते थे तो दिन चढ़ते
0: इट्स नॉस्टैल्जिक
2: वो जमाने कुछ और ही थे और यहां पे आज की दुनिया में मेरे जैसा बंदा मुझे रेडियो वेडियो मैंने किया नहीं कभी
0: जी
2: तो पिछले 16 साल से कर रहा हूं
0: बहुत अच्छी बात है कांग्रेचुलेशंस फॉर टेकिंग
1: कांग्रेचुलेशंस
2: तो ये है कि हमने कभी सीखा ही नहीं
0: हां जी पर मैं अभी आपको रोक के ये कहना चाहूंगी कि ये जो हम भी कह रहे हैं हमारे जमाने में इससे आप ये मत समझिए कि हम बहुत ओल्ड हो गए हैं वी आर स्टिल यंग
2: हम तो यंग हैं यंग रहेंगे
1: राजेश जी एक सवाल आई नो वी आर ऑन द रेडियो
2: एक सवाल के कितने पैसे वाला है
1: ये जो सबरंग रेडियो तक कब हुआ फेयर चाइल्ड रेडियो
2: ये एक्चुअली क्योंकि इसके ना दो रेडियो होते थे मैं थोड़ा बताता हूं फेयर चाइल्ड रेडियो हमारा पेरेंटल रेडियो है
1: अच्छा
2: और इसके ये है मल्टीकल्चर रेडियो
1: अच्छा
2: जब ये 1998 में शुरू हुआ था तो सबरंग ने इनके साथ मिलके तो सब लोगों से सिग्नेचर इकट्ठे किए सारी कम्युनिटी की आवाज बनके हमारे
1: अच्छा
2: तो उस टाइम से ये आया और उसके बाद जब मैंने टेक ओवर किया तो इसके साथ एक साइड बैंड होता था
1: अच्छा
2: जो आपको पता भी वो 24/7 तो वो 24/7 जो था वो मैं 2010 में मैंने दोनों इसका और उसका दोनों का कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिया था
1: अच्छा
2: और वो कुछ साल चलाने के बाद मैंने 24/7 जो था 94 वो फिर मैंने बंद कर दिया क्योंकि मेरे से टू मच होता नहीं था यंग फैमिली थी बेटा छोटा था
1: अच्छा
2: तो कुछ साल तो हमने काफी मेहनत की उस पे तो अब जो है हमारा वो इवनिंग और वीकेंड पे
1: वीकेंड पे इसको
2: तो इसीलिए ये अभी डिफरेंट है
1: थैंक यू
2: तो आपको जी
0: थैंक यू सो मच
2: और जाते-जाते कोई और मैसेज देना चाहेंगे आप
0: हमारा इतना बड़ा डायस्पोरा है यहां पे I think हमने अभी भी उसको ऑप्टिमाइज नहीं किया है इट इज आई फील सो प्राउड दैट हम भारतीय लोग हर जगह पे हैं और कनाडा में तो नंबर इन्यूमरेबल है और इस ये हमारी स्ट्रेंथ है हम बहुत कोई हमारे अंदर बहुत जो कहें कि बहुत काम करने की बहुत क्षमता है पर उसको शायद अभी हम पूरी तरह से निकाल नहीं पाए आई एम होपिंग दैट वी विल बी एबल टू ऑप्टिमाइज दैट and that's it and all the listeners wish you the very best aap khush rahein swasth rahein aur tandurust rahein aur aage bahut acha zindagi jeete rahein dhanyawad
2: thank you very much aap dono ka bhi aur aake aur itni achi achi baatein batane ke liye aur hame shastri institute ke bare mein itni achi information aapne di
0: थैंक
2: यू वेरी मच
0: थैंक यू
2: सारे देखने वाले दोस्तों को भी टाटा बाय बाय एक छोटी सी हम ब्रेक लेने जा रहे हैं जी स्टूडियो की ब्रेक लेते हैं फिर उसके बाद वापस मिलते हैं और बाकी की बातें जो है दोबारा से करते हैं सबरंग रेडियो नाइन
3: फीमेल फैमिली फिजिशियन दा स्वागत करता है
4: गर्मजोशी समझदारी ते प्यार नाल ओ तुहाडे परिवार नु कंफर्टेबल ते वेल केयर्ड फील करवाउन लई हमेशा तैयार है
3: हुन तुसी उना नाल इंग्लिश हिंदी उर्दू ते पंजाबी विच वी गलबात कर सकदे हो ताकि तुसी घर वर्गा एहसास महसूस करो
4: नवे पेशेंट्स हुन एक्सेप्ट हो रहे ने आज ही अपने परिवार लई फैमिली डॉक्टर सिक्योर करो
3: कॉल

0: ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਸ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मुकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। लिसनिंग टू कैलगरीज़ मोस्ट पॉपुलर रेडियो रेडियो सबरम 94.7 FM।
4: Take your business beyond walls and straight to your audience. Sabrong Radio now comes live to your location, bringing energy, excitement, and real-time engagement. From store openings to special events, from product launches to community celebrations, we don't just promote your business, we create an experience your customers remember. Our team reaches your venue, connects with the crowd, and broadcasts your brand across a wide 250 kilometers.
5: मई महीने के आखिरी दिन हैं और सर्दी का मौसम धीरे धीरे शुरू हो रहा है और इसके साथ ही स्मॉग की चादर शहर को अपनी चपेट में ले रही है। चकरा गए ना? अरे भाई, मई जून में गर्मी आपके इलाके में पड़ती है, मतलब भारत में और यहाँ यूरोप में भी, लेकिन चिली में इन दिनों सर्दी का मौसम दस्तक देता है। चिली ही नहीं, दक्षिणी गोलार्ध में पड़ने वाले दूसरे देशों में भी मौसम यूरोप और भारत के उलट चलता है, यानी जब यहाँ गर्मी होती है तो वहाँ सर्दी और जब यहाँ सर्दी तो वहाँ गर्मी। अभी जिन देशों में सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है उनमें चिली के अलावा दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना, उरुग्वे और पराग्वे जैसे देश हैं, तो उधर दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी हैं। फिलहाल तापमान गिरने के साथ ही चिली की राजधानी सेंटियागो पर स्मॉग की मोटी चादर घिरने लगी है। हालात ये हैं कि वहाँ इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है, सड़कों पर वाहनों को सीमित किया जा रहा है, लकड़ी से चलने वाले हीटरों पर रोक लगाई जा रही है और लोगों से अपनी सेहत का ध्यान रखने को कहा जा रहा है। यानी हालात वैसे ही हैं जैसे दिल्ली और उत्तर भारत के शहरों में दिसंबर और जनवरी में होते हैं। तो आइए अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि आज हम आपके लिए क्या क्या लेकर आए हैं। पृथ्वी घूमती है लेकिन हमें इसका पता क्यों नहीं चलता। हिमालय की तेजी से पिघलती बर्फ ने खड़ा किया पानी का संकट। बात करेंगे भारत की सबसे रहस्यमयी जगह नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की भी और आखिर में मिलेंगे एक नन्हे से आर्ड बर्फ से। हमारी पृथ्वी गोल है ये बात तो हम सब जानते हैं और ये भी कि ये लगातार एक तरफ तो अपनी धुरी पर घूमती है और दूसरी तरफ सूरज का चक्कर लगाती है, लेकिन इसका घूमना और इसकी रफ्तार को हम महसूस नहीं कर पाते। आखिर क्यों? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। पृथ्वी हमें घूमती हुई क्यों महसूस नहीं होती? पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लगता है। इक्वेटर पर ये 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुंच जाती है। तो फिर हम चक्कर खाकर क्यों नहीं गिरते? इसके 3 कारण हैं। पहला, तुलना करने को कुछ नहीं है। गति को हम तभी महसूस करते हैं जब कोई चीज हमारे सापेक्ष बदलती है, जैसे कि

0: चलती ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हैं तो शहर या गांव का दृश्य तेजी से पीछे जाता हुआ दिखता है। इसी से हमें अपनी गति का एहसास होता है, लेकिन पृथ्वी पर तो सब कुछ हमारे साथ चल रहा है, यानी कुछ पीछे नहीं छूट रहा है, तो गति का पता कैसे चलेगा। दूसरा कारण, एक समान रफ्तार। इसकी वजह से हमें कुछ भी बदलता हुआ नहीं दिखता। हमें अंतर तभी नजर आता है जब कुछ बदल रहा हो, जैसे कि रफ्तार का तेज होना या कम होना। विमान यात्रा पर हम सिर्फ टेक ऑफ और लैंडिंग को महसूस करते हैं, हमें ये महसूस नहीं होता कि विमान 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। यही बात पृथ्वी के घूमने पर लागू होती है। ये गति इतनी स्थिर है कि कुछ पता ही नहीं चलता। तीसरा कारण है गुरुत्वाकर्षण। घूमने वाला झूला पृथ्वी पर कार्य करने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की अच्छी मिसाल है। ये हमें बाहर की ओर फेंकता है, लेकिन पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल हमें नीचे बनाए रखता है। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से करीब 300 गुना शक्तिशाली होता है, तभी हमें पृथ्वी के घूमने का एहसास नहीं होता। ये सिर्फ एक मिसाल है। हम तो ये भी महसूस नहीं करते कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूम रही है, वो भी ज्यादा स्पीड से। हम इस तरह की रफ्तार को महसूस करने के लिए बने ही नहीं हैं। इस धरती पर आज भी ऐसे बहुत से कोने हैं जो हमारी पहुंच से दूर हैं। ऐसी ही एक अनछुई जगह है भारत में और इसका नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। यहाँ पर मुट्ठी भर लोग रहते हैं, बेहद आदिम तरीके से, हमारी आपकी दुनिया से बहुत दूर और बहुत अलग। उन्हें पूरी तरह संरक्षित रखने के प्रयासों के बावजूद उनका इलाका अतिक्रमण का खतरा झेल रहा है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, ये भारत ही नहीं दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है। ये टापू अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 50 से 60 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ पर किसी को जाने की अनुमति नहीं है और ना ही यहाँ रहने वाले लोगों का बाहर की दुनिया से कोई वास्ता है। आज भी ये लोग वैसे ही आदिम तरीके से जीते हैं जैसे इंसान करीब 10,000 साल पहले जीते थे। इन्हें खेती नहीं आती, पेट भरने के लिए ये शिकार और जंगली भोजन पर निर्भर हैं। इन लोगों को बाहरी दुनिया की बीमारियों से बचाने और इनके संरक्षण के लिए भारत सरकार ने इस टापू को नो कॉन्टेक्ट जोन घोषित किया है। मानव विज्ञानी एंस्टिस जस्टिन उन लोगों में से एक हैं जो सरकार की तरफ से नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर भेजे गए कुछ अभियानों में शामिल रहे। जस्टिन बताते हैं कि जब वो 1986 में पहली बार वहां गए तो उन्होंने क्या देखा।
1: हम आपस में बात कर रहे थे कि वहाँ से धुआं निकल रहा है तो वहाँ लोग हो सकते हैं। इसके बाद हमने सेंटिनली लोगों को जंगल से बाहर आते देखा, तो ये पहला अनुभव था जो हमने वहाँ देखा। जो हमने महसूस किया वो ये था कि उनकी तरफ से कोई बैर का भाव नहीं था। इसका मतलब है कि उन्होंने हमें आने दिया। कुछ मिनटों के बाद हमने उनसे कहा, हम आपको नारियल के कुछ थैले देना चाहते हैं। वे बोले, ठीक है, आ जाओ।
0: माना जाता है कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लोग दुनिया से संपर्क नहीं करना चाहते। 2004 में सुनामी के बाद आखिरी बार भारतीय तटरक्षक और हेलीकॉप्टरों ने दूर से हवाई निगरानी की थी ताकि देखा जा सके कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लोग सुरक्षित हैं या नहीं। उसके बाद इन लोगों से कोई संपर्क नहीं किया गया और ना ही किसी को वहां जाने की अनुमति है।
2: जहां तक नॉर्थ सेंटिनल का सवाल है तो प्रशासन की नीति है कि उससे दूर रहो, निगरानी रखो। इस टापू के 5 किलोमीटर के दायरे में किसी को जाने की अनुमति नहीं है।
0: लेकिन हाल में एक अमेरिकी यूट्यूबर ने गैर कानूनी तरीके से इस टापू पर जाने की कोशिश की, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जाता है कि वो करीब 5 मिनट तक वहां रहा। उसने सीटी बजाई ताकि वहां के आदिवासियों को तट के पास बुला सके। पुलिस के मुताबिक वो वहां नारियल और कोला का कैन भी छोड़कर आया। इस तरह इस यूट्यूबर ने न सिर्फ अपनी जिंदगी को बल्कि वहां के लोगों की सेहत

0: को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इससे पहले 2018 में एक अमेरिकी मिशनरी भी गैर कानूनी तरीके से नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जा पहुंचा, लेकिन बाद में उसकी लाश मिली। इन आदिवासियों के संरक्षण के लिए इस टापू पर जाने की मनाही है, लेकिन जस्टिन सवाल करते हैं कि आखिर कब तक हम इन लोगों को दुनिया से काट कर रखेंगे।
1: ये अपने आप को मूर्ख बनाने वाली बात होगी अगर हम कहें कि सेंटिनली लोग अपनी स्थिति से खुश हैं और उन्हें परेशान क्यों करना। पूरे सम्मान के साथ मैं कहूंगा कि ये खुद को मूर्ख बनाने वाली बात है अगर हम माने कि वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। नहीं, मैं कहता हूं कि उनसे संपर्क होने दीजिए।
0: लेकिन सवाल ये है कि हमारी दुनिया से कटे हुए ये लोग एकदम से इतने बड़े बदलावों के लिए कितने तैयार हैं? उनसे संपर्क बेहद सावधानी और संवेदनशीलता वाला काम है। इसमें गैर कानूनी रूप से वहां घुसने जैसे तरीकों का कोई स्थान नहीं हो सकता। हिमालय को दुनिया की सबसे विशाल पर्वत श्रृंखलाओं में गिना जाता है, जो लगभग 2400 किलोमीटर लंबी है, और ये पर्वतमाला 5 देशों में फैली है, जिनमें भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल और भूटान शामिल हैं। यहीं से गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी बड़ी नदियां निकलती हैं, लेकिन अब यहां पर तेजी से पिघलते ग्लेशियर एक बड़े संकट की आहट दे रहे हैं। बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां इस धरती पर मौजूद 1/4 मानवता की प्यास बुझाती हैं, लेकिन इन पर्वतों की तलहटी में जमीन सूख रही है।
2: Just look at this.
3: देखिए, कुछ नहीं बचा, सब खत्म।
4: It's all gone.
0: लाहौल घाटी में विजय कपूर की गोभी की आधी फसल बर्बाद हो गई क्योंकि खेतों को सींचने के लिए पानी ही नहीं मिला।
3: पत्तियां एकदम सूख गई हैं। देखिए, इसे देखिए, गोभी बिल्कुल सूख गई
4: है।
0: विजय कपूर बताते हैं कि हिमालय से आने वाला पानी कभी इन खेतों की प्यास बुझाता था, लेकिन अब यहाँ की सच्चाई कुछ और है।
3: बहुत पुरानी बात नहीं है जब यहाँ खूब पानी होता था। यहाँ जलधारा आती थी जिसे हम लोग यहाँ घाटी में सभी झरनों की माँ कहा करते थे। आप सोचेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा यकीन मानिए, यहाँ बहुत पानी होता था, अब बिल्कुल सूखा है।
0: इस इलाके में सूखे की स्थिति का जायजा लेने के लिए वैज्ञानिक साल में एक बार यहाँ 4000 मीटर की ऊंचाई पर आते हैं।
5: पहले ग्लेशियर जो है यहाँ पर हुआ करता था, अब जो है ये ग्लेशियर काफी रिट्रीट हो गया है।
0: हिमालय के ग्लेशियर गंगा बेसिन को पानी मुहैया कराते हैं, जो दुनिया के सबसे सघन आबादी वाले इलाकों में से एक है, लेकिन ग्लेशियर तेजी से सिमट रहे हैं।
5: दो स्टेट जो है काफी मेल्ट हो गई, ये जो है लास्ट स्टेट है।
0: यहाँ पर गड़े ये बांस ये समझने में मदद करते हैं कि बर्फ कितनी तेजी से पिघल रही है।
5: जो अक्टूबर का रीडिंग हम लोग लिए हैं, उसमें जो है यहाँ पर बिल्कुल ये नीचे थी, आइस के नीचे थी।
0: इन वैज्ञानिकों की गणना बताती है कि इस इलाके में बर्फ की मोटाई में 5.5 मीटर की कमी आई है।
5: तो बहुत ही ड्रास्टिक मेल्टिंग हुआ है एक साल में। तो उस ग्लेशियर की मेल्टिंग इतनी तेजी से हो रही है, और यहाँ पर जो है स्नो की जो कंडीशन है, जो ग्लेशियर को स्नो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो जिसके कारण इसका नेगेटिव मास बैलेंस हो रहा है।
0: लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों को समाधान चाहिए। वो कृत्रिम ग्लेशियर बना रहे हैं, इसके जरिए वो पानी को संरक्षित कर रहे हैं ताकि अपने इलाके में पानी की कमी से निपट सकें। सर्दियों में ये लोग ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। वहां वो पेड़ की शाखाओं और सामान्य पाइप की मदद से ऐसे ग्लेशियर बनाते हैं।
1: ऊपर लगा पाइप पहाड़ों से आ रहे पानी की बूंदों को इन शाखाओं पर छिड़कता है और फिर वे जमकर बर्फ बन जाती हैं।
0: और इससे इन लोगों को साल के सबसे सूखे और सबसे मुश्किल दिनों में पानी मिलता है।

0: और रियल कनेक्शन. चाहे हो आपकी शॉप ओपनिंग, कोई खास इवेंट, प्रोडक्ट लॉन्च या कम्युनिटी सेलिब्रेशन, हम सिर्फ प्रमोशन नहीं करते, हम आपके ब्रांड को एक यादगार अनुभव बना देते हैं. हमारी टीम पहुंचती है आपके पास, लोगों से जुड़ती है और आपकी पहचान को फैलाती है पूरे 250 किलोमीटर के नेटवर्क में. ज्यादा पहचान, ज्यादा भरोसा, ज्यादा ग्राहक. अपने बिजनेस को बनाइए खास, दिखाइए, सुनाइए और सेलिब्रेट कराइए. आज ही बुक कीजिए सबरंग रेडियो के साथ, आपका ब्रांड ऑन एयर भी और ऑन ग्राउंड भी. मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे 7 to 8 PM, संडे 1 to 5 PM.
1: एशिया पैसिफिक इमिग्रेशन कंसल्टिंग लिमिटेड. स्टूडेंट वीजा, विस्टर वीजा, सुपर वीजा, LMIA applications, family immigration, provincial nominee application, अते citizenship application विच लंबा तजर्बा अते महारत रखता है. तो हार्डी सहूलत ले, मैं मनिंदर सिंह ढिल्लों अते इंद्रजोत कौर ढिल्लों इको छत हेठ इमीग्रेशन अते इंश्योरेंस दी सेवावां प्रदान करते हैं. सानू संपर्क करने लई 403-225-1111. मनिंदर सिंह ढिल्लों, एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन कंसल्टिंग लिमिटेड.
2: रेगुलेटेड कनेडियन इमीग्रेशन कंसल्टेंट.
1: 403-225-1111.
0: From the heart of Calgary to every corner within a 250-kilometer reach, Sabrang Radio is connecting voices, stories, and communities like never before. Whether you're in Calgary, Airdrie, Chestermere, Cochrane, or tuning in from Okotoks, High River, Strathmore, and beyond, we are one sound, one family, one Sabrang. Feel the rhythm, celebrate the culture, and stay connected with voices that matter. More events, more stories, more celebrations are on the way, only on Sabrang Radio, your voice across every mile. Visit our official website, www.sabrang.ca,

नौकरी नहीं लग रही हो, या हो सकता है वो बच्चा आगे पढ़ाई करना है या करियर कौन से फील्ड में बनाना है ये सोच रहा हो, बट पैसा कैसे मंजूर है कि कोई डिग्री पूरी होने के बाद घर रुक के दिखाए। उसी टाइम पड़ोस की आंटियां और अंकल आपने देखा होगा आना घर पे शुरू कर देते हैं, और उनमें से एक भी आदमी, एक भी औरत ये नहीं बोलेगा कि बेटा तुम्हारी हम हेल्प कर देते हैं नौकरी ढूंढने में, या चलो मैं अपना एक्सपीरियंस तुमसे शेयर करती हूं या करता हूं, इससे तुम्हें जॉब ढूंढने में हेल्प मिलेगी। नहीं, लोग एक ही सवाल पूछते हैं कि बताओ तुम घर पे क्यों हो। दूसरे नंबर पे लोग उसको एग्जाम्पल भी देते हैं कि उनके बेटे का पैकेज लग गया, उनके बेटे की नौकरी लग गई। सोसाइटी इतनी क्रूर क्यों है? क्यों सोसाइटी इस बात की परवाह नहीं करती कि एक टर्म है लिबर्टी, एक टर्म है पर्सनल स्पेस, एक टर्म होता है जिसको कहते हैं सेल्फ, कि आदमी कुछ डिसीजंस खुद ले तो उसकी लाइफ के लिए अच्छा होता है। जब भी कभी वर्चू की बात आती है कि एक आदमी की लाइफ का अल्टीमेट एम क्या होना चाहिए, इसी समाज से जब आप जाके पूछेंगे तो इस समाज कहेगा कि सुनो सबकी करो मन की। लेकिन कोई आदमी जब मन की करने पे आता है तो इस समाज को इतनी तकलीफ क्यों होती है? आज की वीडियो में हम यही चीज समझने वाले हैं, इन्हीं सवालों के जवाब, कि किसी को बच्चा करना है या नहीं करना ये उनका डिसीजन होना चाहिए, किसी का डिवोर्स हुआ है या नहीं हुआ ये उनका डिसीजन होना चाहिए, किसी को शादी करनी है नहीं करनी है उनका डिसीजन होना चाहिए, कौन आदमी कैसे कपड़े पहनेगा, कौन लड़की किस स्टेट में नौकरी करेगी, ये सारी बातें सेल्फ मतलब खुद डिसाइड करने की होती है। लेकिन सोसाइटी जो है वो कहीं ना कहीं अपना काम भूल के इस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट लेती है कि कौन सा आदमी क्या कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इन सारे सवालों के जवाब मुझे मिले जेएस मिल के वर्क में। आज हम उन्हीं की बात करने वाले हैं। जाके पैर ना फटे बिवाई, सो का जाने पीर पराई। इसका मतलब क्या जेएस मिल के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था? यस, जेएस मिल जो थे उनकी बात अगर मैं करूं तो जेएस मिल के फादर जो हैं वो जेम्स मिल नाम के बड़े फेमस स्कॉलर थे। जेएस मिल बचपन में ही इस तरह से ट्रेन किए गए थे कि उन्हें भी उनके फादर अपने ही जैसा थिंकर बनाना चाहते थे। जेम्स मिल फादर का नाम है, जेएस मिल बेटे का नाम है। आज की थ्योरी जेएस मिल पे है, बट पहले 2 मिनट निकाल के इनकी लाइफ के बारे में सुनिए। जब दूसरे बच्चे एलकेजी यूकेजी क्लासेस में पढ़ रहे थे उस टाइम इनके फादर ने इनको सिखाई ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज। जिस टाइम दूसरे बच्चे स्कूल में 8 से 10 घंटे एंजॉय किया करते थे लाइफ को एकदम टेंशन फ्री, उस टाइम इनके फादर इनको पढ़ा रहे थे हिस्ट्री, उस टाइम इनके फादर इनको पढ़ा रहे थे प्लेटो क्या बोलता है। बचपन में ही इनके दिमाग को इस तरह से ट्रेनिंग दी गई कि ये एक क्रिटिकल थिंकर बनकर उभरे। इनको अलग अलग स्कॉलर्स का वर्क पढ़ाया गया, लैटिन ग्रीक इंग्लिश हर लैंग्वेज का इनको नॉलेज दिया गया। कहने को लोग इनके लिए तालियां बजाया करते थे कि देखो छोटा सा बच्चा इतना कुछ नॉलेज रखता है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है किसी भी धागे को बहुत ज्यादा नहीं खींचना चाहिए। हुआ क्या कि 20 की एज तक जाते जाते जेएस मिल डिप्रेशन में चले गए। डिप्रेशन के बाद जेएस मिल सुसाइड का सोचने लग गए। ऐसी कंडीशन जब आती है तो जेएस मिल की जिंदगी में उनको बचाने के लिए आती है एक गर्लफ्रेंड। ये जो गर्लफ्रेंड थी इन्होंने इन्हें एहसास कराया कि सिर्फ यहां यहां भरा हुआ काम नहीं आता, यहां भी कोई चीज होती है, यानी आत्मा भी कुछ होती है। यहां से जेएस मिल ने सोसाइटी को सीखा, रिलेशनशिप्स को सीखा। यहीं से जाके जेएस मिल ने पढ़ा कि लिबर्टी क्या होती है। यहीं पे जाके जेएस मिल ने यह समझा कि लोगों की सारी बातें मानते जाना, भले ही वो आपका फादर ही क्यों ना हो, आपके लिए डेंजरस हो सकता है। इन्हीं चीजों की वजह से जेएस मिल जो थे उनका कोर सब्जेक्ट बन गया लिबर्टी, पर्सनल स्पेस, कि किस आदमी को कितना पर्सनल स्पेस मिलना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने जब काम किया, स्टडी करी, तो उनका सबसे फेमस वर्क जो है वो लिबर्टी के बारे में है। जिन लोगों को नहीं पता, लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता। आपने फ्रीडम सुना होगा कि फ्रीडम इज स्वतंत्रता, लिबर्टी उससे एक स्टेप आगे की चीज है। लिबर्टी का मतलब है मेरा जो मन है वो मैं कर सकूं, मेरे मन को भाया वो मैं कर सकता हूं, इसे कहते हैं लिबर्टी। तो जेएस मिल कहते हैं कि इस पूरी दुनिया में एक स्ट्रगल चल रहा है और वो स्ट्रगल है 2 चीजों का। हर आदमी को चाहिए पर्सनल स्पेस, हर आदमी के पास है पर्सनल ओपिनियन, हर आदमी लेता है पर्सनल डिसीजन, और इन तीनों चीजों को मिला के एक आदमी जो है उसकी लाइफ में आती है लिबर्टी। और जब कोई आदमी लिबर्टी को यूज करता है, स्वतंत्रता को यूज करता है, तब वो आदमी बनता है एक फ्री मैन। फ्री मैन को हम आज बोलेंगे सेल्फ।
कि मैं क्या

बच्चा होना ही चाहिए। जैसे सोसाइटी ने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि किसी बच्चे की पढ़ाई पूरी हो गई तो उसे कोई हक नहीं है कि वो अपनी लाइफ जिए, उसे हमारे बनाए हुए स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जॉब करनी ही होगी। सोसाइटी ने यहां तक सेट कर रखा है कि अगर कोई आदमी बीटेक करने के बाद कुछ और करना चाहेगा तो हम उसकी मजाक उड़ाएंगे। सोसाइटी ने सेट कर रखा है कि कोई बच्चा अगर बीए करने के बाद दोबारा से 11th क्लास में एडमिशन लेने की सोचे कि मैं मैथ्स पढ़ूंगा, मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, तो हम उसकी मजाक उड़ाएंगे, हम उसके डिसीजंस को क्रिटिसाइज करेंगे। इस सब की वजह क्या होती है? तो इन सब की वजह आती है, एक टर्म है सोशल टायरनी। सोशल टायरनी जो है यही जेएस मिल का काम है। जेएस मिल ने जो रिसर्च किया वो सोशल टायरनी पर ही किया। टायरनी क्या होती है? तो पहले मैं आपको बता दूं कि एक टर्म है टायरंट। टायरंट का मतलब होता है तानाशाह। तानाशाह कौन होता है? जो दूसरे की बिल्कुल नहीं सुनता। जैसे ही मैं कहता हूं तानाशाह, आपके दिमाग में कौन आता है? आप कहेंगे सर सबसे बड़ा तानाशाह तो हिटलर था, या हो सकता है कुछ लोग नाम लें मुसोलिनी का, हो सकता है कोई करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़ता है, न्यूज अच्छे से पढ़ता है, वो कहेगा अरे सर तानाशाह तो नॉर्थ कोरिया में भी है। लेकिन जेएस मिल कहते हैं ये तो छोटे तानाशाह है, सबसे बड़ा तानाशाह है हमारा समाज। इसी को जेएस मिल कहते हैं सोशल टायरनी। अब जेएस मिल के काम को थोड़ा समझते हैं। जेएस मिल कहते हैं कि जो तानाशाह होते हैं वो दो पार्ट में बांटे जा सकते हैं। एक वो तानाशाह जो पॉलिटिकल तानाशाह होते हैं, इसको कहा गया पॉलिटिकल टायरनी, मतलब राजनीतिक तानाशाही। यहां मैं लिख भी देता हूं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, राजनीतिक तानाशाही। दूसरी तरफ आता है सोशल टायरनी। सोशल टायरनी का मतलब सामाजिक तानाशाही। अभ्यास से समझने की बात है, पॉलिटिकल टायरनी जो है इसका आधार क्या होता है? तो पॉलिटिकल टायरनी का आधार लिया जाता है लॉ, यानी के कानून, यानी के ऑर्डर, आदेश जो आते हैं उनको आधार माना जाता है। जैसे एक ऑर्डर आया कि आपको गाड़ी लेफ्ट साइड में ही ड्राइव करनी है, तो इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि ये कभी भी आपके सेल्फ को हार्म नहीं करता। सेल्फ को हार्म नहीं करता, क्यों नहीं करता? कि मैं जब सड़क पर निकलूंगा तो मुझे पता है सारी दुनिया ही लेफ्ट साइड में गाड़ी चला रही है। या एक लॉ आया कि आपको हेलमेट लगा के ही बाइक चलानी है, या एक लॉ आया कि आपको अपनी इनकम का 30% टैक्स देना है, तो मैं जब चारों तरफ देखूंगा तो मेरी इनकम स्लैब वाला हर आदमी इतना टैक्स दे रहा है, तो ये चीज मुझे हार्म नहीं करेगी, मैं इसे एक्सेप्ट कर लूंगा कि ये तो सिस्टम बना हुआ है, बट ये कभी भी मेरे सेल्फ को हार्म नहीं करेगी। सेल्फ को हार्म करने का मतलब है कि गवर्नमेंट कभी भी ऐसे नियम नहीं बनाएगी कि मुझे शादी करनी है या नहीं करनी। गवर्नमेंट जनरली कभी ऐसे नियम नहीं बनाएगी कि मुझे पढ़ाई क्या करनी है, मैं अगर नौकरी छोड़ना चाहूं या नौकरी करना चाहूं या नौकरी बदलना चाहूं, तो ये सारे डिसीजंस में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। इसका मतलब इस केस में सेल्फ जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, इंटेक्ट रहेगा। दूसरी तरफ आता है समाज। समाज की बात जब आती है तो समाज का बेस जो होता है उसके लिए एक बहुत अच्छी टर्म है और वो है कलेक्टिव ओपिनियन। कलेक्टिव ओपिनियन का मतलब सामूहिक विचारधारा। पॉलिटिकल फिलॉसफी में एक बहुत ही अच्छा कोट आता है कि पूरी दुनिया के सारे इंसानों में से एक इंसान की राय बाकी सबसे अगर अलग है तो भी उस एक इंसान को उतना ही हक है जितना बाकी सबको है अपनी राय रखने का, अपनी ओपिनियन देने का, जीने का, खुल के बोलने का, जितना बाकी लोगों को है। अब समाज को इस बात से तकलीफ होती है। समाज अपनी कलेक्टिव ओपिनियन को ही आधार बना लेता है, और जैसे ही अपनी कलेक्टिव ओपिनियन को आधार बनाता है तो जब भी कभी ऐसा होगा वहां से लॉजिक जो है वो गायब हो जाता है।
लॉजिक गायब होने का बेस्ट एग्जांपल आप ये समझ सकते हो कि एक आंटी एक लड़की पे

इसलिए कमेंट कर रही है कि उसकी शादी टूट गई है या डिवोर्स हो गया है। तो अगर लॉजिक होता तो सबसे पहले तुम्हें यह पता होता शादी और डिवोर्स अल्ट्रा पर्सनल मैटर है। एक होता है पर्सनल, एक होता है अल्ट्रा पर्सनल। अल्ट्रा पर्सनल का मतलब वो चीजें जिसमें आपको तब तक बोलने का हक नहीं है जब तक सामने वाला आपसे एडवाइस ना मांगे या उसने आपको यह हक दे रखा हो। बट लोग अल्ट्रा पर्सनल मैटर्स में घुसना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। पर्सनल स्पेस नाम की चीज की रिस्पेक्ट नहीं करते। ऐसा जब हो रहा है तो इसे कहा जाता है सोशल टायरनी, सामाजिक तानाशाही। अब जेएस मिल कहते हैं कि सामाजिक तानाशाही में एक समस्या है, और वो समस्या क्या है कि इसका जो पेनिट्रेशन कैपेसिटी है, पेनिट्रेशन का मतलब कितना अंदर तक असर करेगा, इसका पेनिट्रेशन मैक्सिमम होता है, अधिकतम अंदर तक ये जाता है, और ये किसी भी इंसान को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसके सेल्फ को तोड़ देता है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो ये सोचने की बात है, 99% सुसाइड्स सोसाइटी करवाती है, सोसाइटी के रूल्स से होते हैं। 1% सुसाइड ऐसे मिलेंगे जिसमें लॉ ऑर्डर या पॉलिटिकल सिस्टम या तानाशाह जिम्मेदार रहा हो। इसी चीज को जब थोड़ा एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे तो हमें पता लगेगा जेएस मिल का जो काम है वो आज भी रेलेवेंट है। फॉर एग्जांपल, एक फादर है, जैसे ही बच्चा हुआ उस फादर ने डिसीजन लिया कि मैं जॉब नहीं करूंगा, मेरी वाइफ जॉब करेगी और मैं बच्चे को संभालूंगा, मैं घर का काम करूंगा। आपने नोटिस किया है कि कितने लोग ऐसा कर पाते हैं? और अगर कोई आदमी अपने घर में अपनी पत्नी को बर्तन धोने में मदद कर रहा है या बच्चे खिलाने में मदद कर रहा है तो हमारी सोसाइटी में कितने लोग हैं जो जाके उसको अप्रिशिएट करेंगे कि आप अच्छा कर रहे हो, और कितने लोग हैं जो उस आदमी पे क्वेश्चन उठाएंगे कि तू आदमी तो है क्या? रीजन उनसे जब पूछा जाए तो वही मिलेगा बेसिक कि लॉजिक तो है ही नहीं, बस सब ऐसा करते हैं इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं। एक लड़की अगर ये डिसीजन ले कि मुझे स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है, या कोई एक लड़का ये डिसीजन ले कि मैं तो एक बिजनेस शुरू करूंगा जिसमें मैं लोगों के जूते धोके दूंगा, या कोई आदमी ये कहे कि मैंने बीटेक कर लिया है अब मैं सुबह सुबह पार्क के बाहर लौकी का जूस बेचूंगा, तो आप में से कितने लोग इस बात पे एग्री करते हैं कि सोसाइटी उनको ये करने देगी? सोसाइटी को इस बात से तकलीफ नहीं है कि वो आदमी कुछ करने की सोच रहा है, सोसाइटी को इस बात से समस्या है कि वो आदमी हमारे कलेक्टिव थिंकिंग के अगेंस्ट कुछ कैसे सोच सकता है। इसी को कहा गया है सामाजिक तानाशाही, सोशल टायरनी। अब सोशल टायरनी एक लेवल और आगे इसको लेके चलते हैं कि किसी ने इंटरकास्ट मैरिज करी या किसी लड़की को उसके कपड़ों से जज करने की आदत, ये तो वर्ल्ड फेमस चीज है, सबको पता होगा कि कपड़े कैसे पहने हैं इससे लोग कैरेक्टर पता लगा लेते हैं। रीजन, सोशल टायरनी, इंटरकास्ट मैरिज के नाम पे लोगों को मारा तक जाता है। अब ऐसी कंडीशन में आता है कि ये जो जजमेंटल होना है, जैसे कि अच्छी लड़कियां ऐसे कपड़े नहीं पहनती या वैसे कपड़े नहीं पहनती, तो लॉजिक कहां है कि कोई लड़की अच्छी है या बुरी है ये तो तब पता लगेगा जब आप उसके कैरेक्टर में घुसेंगे, और उसके कैरेक्टर में घुसने की बजाय आप उस लड़की को जज कर रहे हैं उसकी बॉडी पे एक लेयर चढ़ी हुई है कपड़ों की उससे, और जब रीजन पूछा जाएगा तो लॉजिक है ही नहीं। इन द सेम वे तुम लोगों ने शादी करके हमारी नाक कटवा दी, ऐसी क्या नाक है जो किसी लड़की या लड़के के शादी करने से कट गई? बहुत ही हंसने की बात आती है निकल के, और बहुत ही दुखद बात है। जब हंसने और दुखद दोनों क्यों बोला, इसका रीजन बता रहा हूं। कोई लड़के की उम्र शादी की हो रखी है और वो लड़का शादी नहीं करना चाह रहा है तो उसके घर में इस तरह के लॉजिक दिए जाते हैं कि दादाजी बीमार हैं, मतलब दादाजी बीमार हैं, दादाजी को हार्ट अटैक आया है, तुम शादी कर लो। व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन टू थिंग्स? दादाजी भी हो सकता है ब्लैकमेल करें, बेटा मेरी तो आखिरी इच्छा यही है, आपकी आखिरी इच्छा मोक्ष क्यों नहीं है? आपकी आखिरी इच्छा ये क्यों नहीं है कि मुझे उस जगह घूम के आना है? आपकी आखिरी इच्छा ये क्यों है कि आपके 2 महीने 2 दिन या 2 मिनट के चक्कर में उस आदमी को लाइफ टाइम वो काम करने पे मजबूर कर रहे हो जो वो करना ही नहीं चाहता? तो इसका मतलब सोशल टायरनी क्या फैमिली को भी अफेक्ट करती है? यस। जेएस मिल की खुद की लाइफ से हमें सीखना चाहिए कि पर्सनल स्पेस को हो सकता है पेरेंट्स भी किल करें। तो क्या ऐसे में सोसाइटी में टकराव होगा? यस, सोसाइटी में टकराव होगा, और इन चीजों को जब बच्चे समझेंगे उसी टाइम सोसाइटी ग्रो करेगी। वाय, हमें थिंकर चाहिए, हमारी सोसाइटी को वो लोग चाहिए जिनमें लॉजिक हो, हमें वो भीड़ नहीं चाहिए कि बस हम इसलिए चल रहे हैं कि अगली भीड़ उस डायरेक्शन में जा रही है तो पीछे वाली भी उसके पीछे ही जाएगी। हमें थिंकर चाहिए, और थिंकर पैदा होने से पहले कुछ

चल दिए जाते हैं। कितने लोग हैं जिन्हें बीटेक इसलिए करनी पड़ी क्योंकि घर वालों ने उन्हें ब्रेन वॉश कर दिया था सेवंथ एट्थ स्टैंडर्ड में ही कि आपको तो आईआईटी करना है, आपको जेई करना है। कितने लोग हैं जो कॉरपोरेट ऑफिस में, हो सकता है एमएनसी में कहीं बैठ के इस वीडियो को देखते टाइम सोच रहे हो कि यार मुझे पढ़ना तो लिटरेचर था, मेरे को तो फार्मिंग अच्छी लगती थी और पता ही नहीं लगा लाइफ कैसे चली गई। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन है कि किसी भी इंसान में से ये कोई आदमी है, भले ही इस आदमी के पास कितनी भी बड़ी पोस्ट आए, इस आदमी में से अगर आप माइनस कर दो उसका सेल्फ, तो उस आदमी के पास कुछ भी नहीं बचेगा। और ये जो सेल्फ है इसको छीनने का काम करती है सोशल टायरनी, जिस पे आज हम बात कर रहे हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं और फिर इस पे थोड़ा समझते हैं कि कैसे जेएस मिल के लेंस से चश्मे को देखा जाए। आपने देखा है आजकल फैमिली के, समाज के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं दोस्तों के, उन व्हाट्सएप ग्रुप में भी झगड़े शुरू होते हैं। उन व्हाट्सएप ग्रुप में आप थोड़ी सी बात उस ग्रुप के ज्यादातर लोगों की ओपिनियन के अगेंस्ट करके देखो, फिर देखो आपको हो सकता है देशद्रोही करार दे दिया जाए, हो सकता है आपको ये कह दिया जाए बदतमीज हो, या हो सकता है कुछ लोग ग्रुप लेफ्ट कर जाए। मतलब एक आदमी जिसकी एज इतनी है कि वो खुद को एडल्ट कह सकता है, उसका ईगो इतना बड़ा हो गया है कि एक आदमी ने उसके अगेंस्ट ओपिनियन दे दी और उस आदमी ने ग्रुप छोड़ दिया या उससे बात करनी बंद कर दी। यहां से पता लगता है कि वो आदमी खुद भी ना तो सेल्फ को कभी फील कर पाया, ना वो किसी और के सेल्फ को कभी एग्जिस्ट होते देख सकता है। वो ये चाहता है कि सब भेड़ बन के रहें और उसी ट्रेंड में, उसी पैटर्न में चलते जाए। डिजिटल मीडिया आने के बाद ये उम्मीद थी कि लोग अपनी ओपिनियन को बहुत अच्छे से इजिली एक्सप्रेस कर पाएंगे, लेकिन डिजिटल मीडिया ने काम शुरू किया एको चैंबर्स का। एको चैंबर्स मतलब अगर आपको डाइवोर्स की एक दो रील आपने देख ली तो पूरे दिन आपको ऐसा ही कंटेंट दिखाया जाएगा कि आपकी ओपिनियन में से लॉजिक खत्म होता जाएगा। इस चीज ने रास्ते आसान कर दिए कंपनीज के, कैपिटलिज्म के, कि आप तक हर वो चीज पहुंचाई जा सके जिसकी आपको जरूरत है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी 5,000 रुपए की घड़ी भी पहन सकता है, लेकिन सोसाइटी के अंदर अगर आप जाएंगे तो लॉजिक हटाने की वजह से आज ऐसा ट्रेंड बन गया है कि 5,00,000 रुपए की घड़ी खरीदना एक अचीवमेंट माना जाता है। वाई, ये कब से हो गया कि चीजों से हम लोगों को जज करने लगे। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे, कोई आदमी अगर आके ये कहे कि मेरे को मेंटल हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, मैं अगर बाहर जाके खांसने लग जाऊं और बोलूं भाई मेरी तबियत खराब है, 4 लोग हालचाल पूछने आएंगे। लेकिन अगर मैं ही बाहर जाके बोलूं कि मैं डिप्रेशन में हूं, मेरी मेंटल हेल्थ खराब है, आपको पता है ज्यादातर लोग क्या बोलेंगे? पागल हो गया है, दिमाग खराब हो गया है। व्हाई? लॉजिक नहीं है उनके पास। उन्होंने कलेक्टिव वे में बिना लॉजिक के, बिना सेल्फ को फील किए अपनी लाइफ गुजार दी। अब वो चाहते हैं कि ये भी ऐसे ही गुजारे। इसी के रिजल्ट की वजह से नई जनरेशन, जिसको जेन ज़ी कहा जा रहा है, उसको बदतमीज कहा जाता है। वो लोग बदतमीज नहीं है, वो लोग बोलना शुरू कर चुके हैं। और अगर हो सके तो जितने भी पेरेंट्स या जितने भी एल्डरलीज बात सुन रहे हैं, प्लीज, आपने कभी सेल्फ फील नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि नई जनरेशन के सेल्फ को आप कुचल दें। यू शुड लिसन टू देम, बिकॉज आज की दुनिया में एक क्लिक पे हर चीज अवेलेबल है। जो भी बच्चा जेएस मिल या ऐसे किसी भी वर्क को पढ़ लेगा, जो बच्चा लिबर्टी को फील करने लग जाएगा, वो बच्चा बोलेगा मैं अपने डिसीजंस खुद लूंगा और उन डिसीजंस में आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, आप मुझे स्लेव की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। और जब इस तरह की सोसाइटी हो जाएगी तभी तो फर्क आएगा। आप इमेजिन कीजिए एक गार्डन जिसमें 4 किलोमीटर तक सिर्फ गुलाब लगे हुए हैं, एक ही कलर के, एक जैसे गुलाब। दूसरी तरफ एक गार्डन है जिसमें हर कदम पे अलग तरह का फ्लावर है। आप कौन से गार्डन में जाना पसंद करेंगे? हो सकता है एक बार देखने में गुलाब बहुत अच्छा लगे, बट ये गुलाब ठीक हमारे नए बन रहे शहरों की तरह बदसूरत दिखने लग जाता है। रीजन, एक जैसे मकान, एक जैसी सड़कें, एक जैसे चौराहे, कब तक कोई इनको देखेगा? हमारी सोसाइटी में अलग अलग तरह के थॉट्स, अलग अलग तरह के ब्रेन, अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशन, अलग अलग तरह के लाइफस्टाइल हमेशा से मौजूद रहे हैं, और वो चीज सोसाइटी को अप्रिशिएट करने वाली चीज लगनी चाहिए। लेकिन नहीं, सोसाइटी चाहती है सब गुलाब के फूल बन जाएं, सोसाइटी चाहती है सब एक ही तरह से नमस्ते करें, सोसाइटी चाहती है सब एक ही तरह से गर्दन झुकाएं। तो क्या हम सोसाइटी को पूरी तरह से नकार दें? नहीं। यहां जेएस मिल कहते हैं कि अब वक्त आता है, हमें यह देखना है कि किस जगह तक आदमी सेल्फ और सोसाइटी की लड़ाई में जायज है। तो ऐसी चीजें जैसे कोई भी आदमी जो है वो एक्शंस लेता है या काम करता है, तो वो दो टाइप के होते हैं।

0: ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਟਾਈਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਲ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਵਾਸਟ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸੀਈਓਜ਼ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੀਈਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਨ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ
1: ਬਾਕੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਆਪਕਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਪਰ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਹੈ ਆਪ ਚਾਰ ਦਿਨ ਕੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਪਕੜਤੇ ਹੋ ਫਿਰ ਪਾਂਚਵੇਂ ਦਿਨ ਛੋੜ ਦੇਤੇ ਹੋ ਬਚਪਨ ਸੇ ਆਪਕੋ ਯੇ ਕਹਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾ ਆਪ ਖੁਦ ਬੱਚੇ ਹੈ ਔਰ ਅਭੀ ਘਰਵਾਲੋ ਕੇ ਸਾਥ ਯੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਕੀ ਕਿ ਆਪਕਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਮੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਗਤਾ ਹੈ ਔਰ ਘਰਵਾਲੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪਕੋ ਤਾਨੇ ਦੇਤੇ ਹੈ ਯਾ ਯੇ ਸਿਸਟਮ ਯਾ ਯੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜੋ ਹੈ ਯੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਮਾਰਕ ਆਪ ਪੇ ਡਾਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਇੱਕ ਕੰਮ ਪੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੋ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਲਾਈਫ ਮੇ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਐਸਾ ਚਲੇਗਾ ਕਿ ਆਪ ਚਾਰ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋ ਦਿਨ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਕਰੀਅਰ ਚੁਣੋ ਕਿਤਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਸਾਥ ਕੋਈ ਕੈਸੇ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅੰਦਰ ਸੇ ਆਪਕੋ ਯੇ ਫੀਲ ਹੋਨੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਕੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਗੜਬੜ ਹੈ ਤੋ ਆਜ ਕਾ ਵੀਡੀਓ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਕੇ ਲੀਏ ਹੈ ਯਾ ਆਪਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੇ ਲੀਏ ਹੈ ਯਾ ਉਨ ਲੋਗੋ ਕੇ ਲੀਏ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟੀਚਰਸ ਕੇ ਲੀਏ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਮੈਂ ਪੜ ਰਹਾ ਥਾ ਮੁਝੇ ਮਿਲੀ ਤੋ ਮੇਰੇ ਕੋ ਲਗਾ ਕਿ ਆਪਸੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਚਾਹੀਏ ਤੋ ਸਬਸੇ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਆਪ ਵੋ ਲੋਗ ਹੈ ਜਿਨਕੋ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਤਾਨੇ ਦੇਤੇ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਮ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਮਨੇ 10 ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਬੀਚ ਮੇ ਛੋੜ ਦੀਏ 11ਵੇਂ ਕੰਮ ਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੋ ਆਪ ਬ੍ਰੋਕਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਮੇ ਆਤੇ ਹੋ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਕੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕੈਟੇਗਰੀ ਐਮ M टाइप का ब्रेन जो होता है M मतलब मल्टी पोटेंशियलेट अभी मल्टी पोटेंशियल मतलब बहुत सारी चीजें इनके अंदर करने की कैपेसिटी होती है तो अगले कुछ मिनट्स के अंदर हम बात करेंगे कि M टाइप का ब्रेन अगर आपके पास है तो आप अपनी सेल्फ इमेज कैसे चेंज कर सकते हैं और M टाइप का ब्रेन अगर आपके पास है तो कैसे आप दुनिया से अलग हो सकते हैं जैसे ही मैंने बात करी दुनिया से अलग होने की तो मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि दुनिया में लोग अपना रास्ता दो तरह से बनाते हैं एक वो जो भरे पड़े हैं दुनिया में जिनको स्पेशलिस्ट कहा जाता है स्पेशलिस्ट मतलब सब जानते हैं कि वो लोग जो एक रास्ता पकड़ लेते हैं उस एक ही रास्ते पे जीवन भर अपना जो है पूरा फोकस बनाए रखते हैं और उसी एक ही रास्ते पर चलते जाते हैं ये होते हैं स्पेशलिस्ट जैसे एक आदमी ने 12th क्लास बायो से पास करी फिर उस आदमी ने MBBS किया MBBS के बाद उस आदमी ने MD किया या MS किया उसके बाद वो और आगे चला गया सुपर स्पेशलाइजेशन किया उसके बाद उसने अपना हॉस्पिटल डाला ये लोग जो होते हैं ये सक्सेस की गारंटी माने जाते हैं कि एक फील्ड पकड़ लिया उस एक फील्ड के अंदर वो चले ही जा रहे हैं अब सीधा रास्ता स्पेशलिस्ट बनने का रास्ता है सब जानते हैं एक ही फील्ड में डीप जाओ इतना डीप जाओ अगर माउंटेन है तो उसमें ऊंचाई तक जाओ डीप जाना है तो इतना डीप जाओ कि अंत आ जाए उसका वहां तक चलते जाओ दूसरा रास्ता है मल्टी पोटेंशियलाइट रास्ता अभी जो मल्टी पोटेंशियलाइट रास्ता है ये बच्चे कैसे चलते हैं ये बच्चे चलते हैं कि भाई चलते चलते थोड़े दिन साइंस भी पढ़ रहे हैं फिर साइंस पढ़ते पढ़ते कोई उनको किसी दिन म्यूजिक में इंटरेस्ट आ गया वो म्यूजिक भी सीख रहे हैं उनको दुनिया भी घूमना है उनको वीडियो बनाने भी सीखने हैं एडिटिंग भी सीखनी है उनको कागज के जहाज बनाने में मजा आता है उनको माइक्रोस्कोप से भी खेलना है उनको ब्रश से भी खेलना है मतलब ये इस बच्चे को जब भी कोई देखेगा तो वो कहेगा यार ये तो बर्बाद है इसकी तो लाइफ लेकिन नहीं साइंस कह रहा है ऐसा नहीं है कि क्यों कि ये जो बच्चा है हो सकता है ये बच्चा M टाइप हो और M टाइप मतलब मैं बार बार बोल रहा हूं मल्टी पोटेंशियलाइट हो अब जो मल्टी पोटेंशियलाइट है वो क्या होता है कि मल्टी पोटेंशियलाइट वो होता है जो बहुत सारे जिसके इंटरेस्ट हो और एक से ज्यादा जगह पे उसका क्रिएटिव साइड जो है वो बहुत अच्छा दिखता हो मतलब म्यूजिक हो सकता है आर्ट हो सकता है साइंस हो सकता है टेक्नोलॉजी हो सकता है वो बुक्स लिखता हो कुछ भी करता हो ठीक है अब जो सीधे रास्ते पे जा रहा है वो कॉन्फिडेंस देता है घर वालों को जो माउंटेन की तरफ जा रहा है कॉन्फिडेंस देता है घर वालों को क्योंकि उनको पता है या तो डॉक्टर बन जाएगा या इंजीनियर बन जाएगा लॉयर बन सकता है एक अच्छा टीचर बन सकता है एक अच्छा सब्जेक्ट एक्सपर्ट बन सकता है ये PhD कर सकता है पेरेंट्स जो है प्राउड फील करते हैं मैट्रिमोनियल एड्स जो आते हैं वो इन्हीं के बेसिस पर लिखे जाते हैं कि भाई बंदा ये करता है हमारा दूसरे रास्ते की जिसकी मैं बात कर रहा हूं जो सीधा नहीं है जो घूम फिर के जा रहा है रास्ता इसमें कर्व्स है बहुत सारे रेलवे क्रॉसिंग आते हैं ऐसे क्रॉसिंग है आसपास में बिखरा पड़ा है कहीं पे इनके रास्ते में गिटार आ रही है कहीं पे माइक्रोस्कोप आ रहा है कहीं पे बीच में गुनाहों का देवता आ रहा है कहीं पे बीच में कुछ और आ गया कहीं पे गजल सीखने लग गए कहीं पे ये तबला सीखने लग गए कहीं पे मूवी बनाना सीख रहे हैं पूरी दुनिया की आर्ट से सीखना चाह रहे हैं अब किसी से भी पूछा जाए तो वो क्या कहेगा कि पहला रास्ता चुनो क्यों क्योंकि इसमें प्रेडिक्टेबिलिटी है इसमें पता है कि सक्सेस के चांसेस ज्यादा है लेकिन साइंस ने ये प्रूव कर दिया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जन्म से ही इस रास्ते के लिए बने हैं और अगर इस रास्ते के लिए कोई बना है नेचर ने उसको इस रास्ते के लिए बनाया है तो इसका मतलब यह है कि उसके दिमाग की वायरिंग ही उस हिसाब से हुई है। उस आदमी को अगर आप इस रास्ते पर धकेलेंगे तो वो आदमी परेशान रहेगा जीवन भर।

0: अब हमारी सोसाइटी की आदत क्या है कि वायरिंग ये वाली हो या ये वाली हो, तुम्हें तो ऐसे ही करना पड़ेगा। सक्सेस तभी मिलेगी जब तुम एक ही काम को ऐसे पकड़ के चलोगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है एमिली वैपनिक। एमिली वैपनिक, एमिली वैपनिक ने सबसे पहले सामने आकर बात करी एम टाइप की, मतलब मल्टी पोटेंशियलाइट की। मल्टी मतलब बहुत सारे, पोटेंशियल मतलब क्षमताएं, उनके अंदर कैपेसिटी। एक ऐसा आदमी जिसके अंदर अलग अलग डायरेक्शंस में काम करने की कैपेसिटी होती है, और इनमें से ऐसा नहीं है कि वो किसी भी सेक्टर में आगे नहीं निकलने वाला है। अच्छा, इनकी एक और चीज ये देखा जाता है कि अक्सर जो एम टाइप ब्रेन वाले लोग होते हैं, उनके लाइफ में जैसे ही वो 40 की एज तक आते हैं, तब तक किसी को ऐसा लगता है कि ठीक ठाक चल रही है लाइफ इनकी। अब इनके बहुत सारे इंटरेस्ट होंगे, लोग सोचेंगे यार ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। एग्जाम्पल देंगे उसको कि उसका एग्जाम्पल लेते हैं, उसने इंजीनियरिंग कर ली, उसका पैकेज लग गया, उसने एमबीबीएस कर ली, उसने हॉस्पिटल डाल लिया, उसने एलएलबी कर ली, वो वकील बन गया, और ये जो है ये बहुत सारे काम कर रहा है। करते करते करते करते एकदम से ऐसा माना जाता है कि 40 की एज के आसपास आके इनका पीक होता है एम टाइप पर्सनैलिटी का। और ये जो 40 की एज के पास जब ये लोग अपने पीक पर आते हैं, तो जिन लोगों के एग्जाम्पल आप दिया करते थे, ये इतने कैपेबल हो जाते हैं कई बार कि उन लोगों को ये हायर करके अपने यहाँ पे काम देते हैं कि आओ मेरे यहाँ पे काम करो, तुम, मैं तुम्हें काम देता हूँ। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात अगर हम करें, तो एक आते हैं लियोनार्डो दा विंची। सुना होगा आपने लियोनार्डो दा विंची जो है, अगर वो आज के टाइम में पैदा होते तो लियोनार्डो दा विंसी को भी आज के करियर काउंसलर क्या बोलते कि बेटा या तो पेंटर बन जाओ या साइंटिस्ट बन जाओ, या तो इंजीनियर बन जाओ या आर्किटेक्ट बन जाओ। हाँ, तो एक से ज्यादा फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन आप जानते हो, अगर लियोनार्डो दा विंची आज होते तो मोनालिसा थोड़ी मिलती, हमको एनाटॉमी के डायग्राम थोड़ी मिलते जिनको आज भी एमबीबीएस की बुक्स के अंदर स्टडी किया जाता है, हमको फ्लाइंग मशीन के डिजाइन थोड़ी मिलते जिनको स्पेस साइंस वाले साइंटिस्ट पढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का एग्जाम्पल आप ले सकते हो, अगर वो सिर्फ पोएट होते तो जनगणमन तो मिल जाती अपने को, लेकिन उन्होंने जो पेंटिंग्स बनाई उनका क्या होता, उन्होंने जो गाने लिखे उनका क्या होता, उन्होंने जो फिलोसफी की बातें की उनका क्या होता, उन्होंने एथिक्स पे जो लिखा उनका क्या होता, उन्होंने जो नॉवल लिखे शांति निकेतन लिखा उसका क्या होता। तो इसका मतलब ये है ना कि जो चीजें की बात हम कर रहे हैं कि भाई हम जहां पे बात कर रहे हैं कि मल्टी पोटेंशियलाइट जो है ये होना बुरा है या अच्छा है, उसके एग्जाम्पल्स एक इंटरनेशनल और एक नेशनल लेवल का हमारे सामने है। अब हम आगे बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल के अंदर कि जो मल्टी पोटेंशियलाइट है, इनके ब्रेन की वायरिंग कैसे दूसरों से अलग होती है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि ये जो एक से ज्यादा सेक्टर में इंटरेस्ट लेने वाले लोग होते हैं, इनकी जर्नी तीन स्टेज में होती है, तीन स्टेज के अंदर चलती है। इनकी लाइफ की पहली स्टेज जो है वो होती है स्कैनर। स्कैनर क्या होता है, जैसे स्कैन करते हैं ना हर चीज को, ठीक है, वैसे होता है स्कैनर। तो अब ये क्या है स्कैनर, बारबारा शेर नाम के एक थे, उन्होंने सबसे पहले ये स्कैनर जो थे, उनकी एक बुक है बड़ी फेमस, रिफ्यूज टू चूज, उस बुक के अंदर उन्होंने ये काम में लिया है ये टर्म। स्कैनर क्या होता है, स्कैनर वो बच्चा है। अच्छा, अक्सर स्कैनर पर्सनैलिटी जो है ये 20 की एज से पहले दिखने लग जाती है कि इसके अंदर स्कैनर पर्सनैलिटी के गुण है, और स्कैनर वाले बच्चे जो है उनके घर वालों से बहुत झगड़े होते हैं। स्कैनर वो बच्चा है जो क्यूरियस है, हर चीज उसको जाननी है, हर चीज उसके हाथ में हो सकता है। कभी टेलीस्कोप आ जाए तो उसको स्पेस सीखना है, किसी दिन माइक्रोस्कोप आ गया उसको माइक्रोबायोलॉजी सीखनी है, उसको हिस्ट्री भी पढ़नी है, उसको पेंटिंग भी सीखनी है, उसको कोडिंग भी सीखनी है, उसको किताबें भी पढ़नी है, उसको हर चीज। मतलब वो क्या कर रहा है, वो स्कैन कर रहा है इस दुनिया को, इसलिए उसको कहते हैं स्कैनर। उसका कोई एक स्पेसिफिक गोल नहीं है, उसको लर्निंग चाहिए, एक्सप्लोरेशन चाहिए, उनके उसके दिमाग को किक मिलती है इस चीज से, नई नई चीजें उसको सीखनी है। इन बच्चों के पेरेंट्स हमेशा दुखी रहते हैं, इन बच्चों के पेरेंट्स कहते हैं इसका फोकस ही नहीं है। इनके टीचर्स जो है वो पेरेंट्स को बुला के मीटिंग के अंदर बोलते हैं कि ये बच्चा स्कैटर्ड है, एक जगह अगर ये फोकस कर ले तो ये कुछ भी कर जाएगा। बट रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है इस बच्चे की ब्रेन की वायरिंग उसके अंदर एक मैप बना रही है। ये जो मैप है, ये मैप ऐसे है जैसे मैप पे हम लोकेशन पिन करते हैं, ऐसे उस बच्चे का जो ब्रेन है उस ब्रेन के अंदर लोकेशंस को पिन कर रहा है दिमाग, ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे। मतलब ये उसकी लाइफ में तैयार होने की पहली स्टेज रेडी हो रही है, जिसको हम कह रहे हैं स्कैनर। अब जो स्कैनर है वो बहुत सारी चीजों से इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्ट करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, साथ में लर्निंग भी हो रही है, कुछ चीजें सीखता जा रहा है, सीखता जा रहा है। तो उसके ब्रेन के कई सारे हिस्से अलग अलग काम के लिए जो बने हैं वो डेवलप होते जाएंगे। अब जब ये डेवलप होते जाएंगे तो कॉर्पस कैलोसम और दूसरे पार्ट्स जो है वो जब कनेक्शन अपना दिखाना शुरू करेंगे, न्यूरॉन्स की फायरिंग जब अपना असर दिखाना शुरू करेगी, और हमारे ब्रेन की सबसे बड़ी पावर जिसको न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं, न्यूरो इलास्टिसिटी बोलते हैं, वो जब अपना काम करना शुरू करेगी, तब इन लोगों की आती है स्टेज टू। अब मैंने क्यों कहा था कि 40 के आसपास ये अपने पीक पे होते हैं, कि 20 से 30 के बीच में या 30 से 40 के बीच में कहीं भी ये मल्टी पोटेंशियल एट जो है उसको
1: थोड़ी होर गलबात करांगे आने वाले टाइम च। सो फार तुहानू

0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है
1: मिलिए डॉक्टर मगर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देती है मुकम्मल केयर
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी
3: नमस्ते सत श्री अकाल आदाब लिसनिंग टू कैलगरी मोस्ट पॉपुलर रेडियो रेडियो सबराउंड 94.7 एफएम
4: Take your business beyond walls and straight to your audience. Sabrang Radio now comes live to your location, bringing energy, excitement, and real-time engagement. From store openings to special events, from product launches to community celebrations, we don't just promote your business, we create an experience your customers remember. Our team reaches your venue, connects with the crowd, and broadcasts your brand across a wide 250-kilometer network. More visibility, more trust, more customers. Let your business be seen, heard, and celebrated. Book your live promotion today with Sabrang Radio. Your brand, on air and on ground. Visit sabrang.ca or call 403-400-0203.
5: फीमेल फैमिली फिजिशियन दा स्वागत करता है
6: गर्मजोशी समझदारी ते प्यार नाल ओ तुहाडे परिवार नु कंफर्टेबल ते वेल केयर्ड फील करवाउन लई हमेशा तैयार है
5: हुन तुसी उना नाल इंग्लिश हिंदी उर्दू ते पंजाबी विच वी गलबात कर सकदे हो ताकि तुसी घर वर्गा एहसास महसूस करो
6: नवे पेशेंट्स हुन एक्सेप्ट हो रहे ने अज ही अपने परिवार लई फैमिली डॉक्टर सिक्योर करो
5: कॉल करो 587-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक वॉक-इन सवेरे 9 बजे तो शाम 6 बजे तक
6: सानू मिलो किंग्स व्यू बुलेवर्ड ते या कॉल करो 587-360-6890
5: छोटे परिवार दी सेहत साडी जिम्मेदारी
3: हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब

0: ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0200-403-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए

0: ऑप्शंस का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुली हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
0: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
2: Namaste, Sat Sri Akal, Ladab. You're listening to Calgary's most popular radio, Radio Sahagun, 94.7 FM.
3: Take your business beyond walls and straight to your audience. Sahagun Radio now comes live to your location, bringing energy, excitement, and real-time engagement. From store openings to special events, from product launches to community celebrations, we don't just promote your business, we create an experience your customers remember. Our team reaches your venue, connects with the crowd, and broadcasts your brand across a wide 250-kilometer network. More visibility, more trust, more customers. Let your business be seen, heard, and celebrated. Book your live promotion today with Sahagun Radio. Your brand, on air and on ground. Visit sahagun.ca or call 403-400-0203.
4: टच करना शुरू कर देते हैं। अब ये मल्टी पोटेंशियल इट क्या होता है कि इस आदमी ने एक से ज्यादा फील्ड एक्सप्लोर किए। अब ये जो एक से ज्यादा फील्ड उसने एक्सप्लोर किए, थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा सब सीखता गया, लेकिन होगा क्या कि अब जो है स्कैनर जो कैपेसिटी थी उसके अंदर कोई भी एक से ज्यादा फील्ड के अंदर अब उसके स्पाइक आने लग जाते हैं। अब तक थी क्यूरियोसिटी, मतलब उसको जानना था। यहां स्टेज वन जो थी दैट वॉज क्यूरियोसिटी की स्टेज, अब वो कैपेसिटी की स्टेज में एंटर कर गया है। मतलब पहले क्यूरियस था, अब वो कैपेसिटी कैरी कर रहा है। मतलब यहां पर उस आदमी को ये पता था कि मैं नहीं जानता, यहां उस आदमी को पता लग गया कि बहुत सी चीजें हैं जो मैं जानने लग गया हूं। अब यहां हो सकता है वो 10 फील्ड को एक्सप्लोर कर रहा था, अब 10 से हो सकता है घट के 3 ही रह जाए। बट ये जो 3 फील्ड है इसके इंटरेस्ट के, इन 3 फील्ड के अंदर याद रखिएगा बाकी के 7 फील्ड जो उसने एक्सप्लोर किए वो एक्सपीरियंस और वो जज्बा जो है वो भी इसकी हेल्प करेगा। हो सकता है ये जो स्पाइक की बात मैं कर रहा हूं ये आर्ट्स के अंदर आए, हो सकता है ये स्पाइक जो है ये साइंस के अंदर आए, हो सकता है टेक्नोलॉजी में आए। मतलब सेम क्यूरियोसिटी रहेगी बट अब एकदम शार्पनेस आ जाएगी, उसके आइडिया जो है वो क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। रिसर्चर्स जो है वो इसको इस तरह से क्लैरिफाई करते हैं कि भाई अब क्या हुआ है, इसने पिक करना शुरू किया है कि मेरे को इन 3 फील्ड के अंदर घुसना है। अब क्या होता है कि अब इससे अगली स्टेज जो आती है, ये स्टेज 1 थी, अब आई स्टेज 2 और अब ये दुनिया पे राज करना शुरू करेंगे। अब आएगी इनकी स्टेज 3। स्टेज 3 जो है ये पॉलीमैथ स्टेज होती है। पॉलीमैथ स्टेज जो है ये अप्रोक्सीमेटली ऐसा कहते हैं 40 के आसपास या 40 के बाद आना शुरू होती है। अब ये जैसे यहां पर पहुंचेंगे तो होगा क्या, तो पॉलीमैथ स्टेज जो है ये वो स्टेज है जिसमें ये कह सकते हैं कि अब एक्चुअल में अचीवमेंट्स दिखने शुरू हो जाएंगे, अब इनकी एक्सपर्टीज एक से ज्यादा फील्ड में दिखनी शुरू हो जाएंगी। आप नाम लेना शुरू करें, आप गूगल करके देखें, लियोनार्डो दा विंसी, मैं हमेशा कहता हूं, बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात आप कर सकते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात आप कर सकते हैं और आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर की बात कर सकते हैं, ये सब पॉलीमैथ थे। यहां पे ये फॉर्मूला अपने को दिमाग में याद रखना है कि स्कैनर जो है वो मल्टी पोटेंशियलेट को डिस्कवर करता है। स्कैनर जब बहुत सारी चीजों को स्कैन करता है तो वो बनता है मल्टी पोटेंशियलाइट। मल्टी पोटेंशियलाइट जब डिस्कवर करता है तब वो बनता है पॉलीमैथ, और पॉलीमैथ जो है वो जाके
5: शुरू कर दें। एक बार फिर तो स्वागत है जी सबरंग रेडियो 94.7 के सारे लिसनर्स दा। अज दे प्रोग्राम च आपां गलबात कर रहे हैं ते एम टाइप बच्चों बारे गलबात कर रहे सीगे, ते मैं चाहूंगा थोड़ी जी तुहाडे कोल दे बारे भी नॉलेज ले जावे क्योंकि तुसीं बच्चों नाल तुहाडा साथ जिहड़ा बहुत लंबे समय तो है। हाँ जी, सारी जिंदगी तुसीं दस्सिया वी 28 साल एक वड्डा टाइम हुंदा जिहड़ा तुसीं बच्चों नूं पढ़ाया, ते बहुत बच्चे तुसीं देखे होणगे ते उहनां दे नाल काम कीता होएगा। सो की कहना चाहोगे एम टाइप बच्चों बारे, कोई तुहाडे परसनल जिंदगी दे विच वी तुसीं कदी इदां देखे बच्चे?
6: हाँ जी, एक्चुअली एम टाइप टर्म शायद मैं पहली बार सुनी, पर मल्टी टैलेंटेड अपा मतलब अक्सर गल करते हैं कि जिवें असीं देखदे कि कोई बच्चा दूसरे बच्चे नाल मैच नहीं करता कपैसिटीज दे नाल, हर एक बच्चे दी कपैसिटीज डिफरेंट हुंदियां। तुसीं 3 Idiot मूवी देखी होएगी, उस दे विच एक डायलॉग हुंदा कि पहले इसने इंजीनियरिंग करी फिर उसके बाद MBA करके बैंक में नौकरी कर रहा है, कि अगर बैंक में ही नौकरी करनी थी तो इंजीनियरिंग क्यों करी, है ना। तो मतलब जेड़ा बंदा कह रहा उसका फोकस एक होएगा कि डायरेक्टली मैं साइंटिस्ट ही बनना है, उसकी लाइफ दे विच कोई डायवर्जेंस नहीं होनी।

عزي شروع. चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर दूसरी बार खिताब जीत लिया है। आरसीबी ने गुजरात टाइटंस की ओर से जीत के लिए मिले 156 रन के टारगेट को 18 ओवर में 5 विकेट गवाकर हासिल कर लिया और इस जीत के हीरो रहे विराट कोहली, जिन्होंने 75 रन की नाबाद पारी खेली। आरसीबी की लगातार दूसरी खिताबी जीत के हीरो उसके गेंदबाज भी रहे। रसिक सलाम डार ने 3 विकेट लिए, वहीं भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड के हिस्से में 2-2 विकेट आए। मैच की बात करें तो टॉस जीतकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले गेंदबाजी चुनी थी। गुजरात टाइटंस के वॉशिंगटन सुंदर ने 50 रन की नाबाद पारी खेलकर जीटी की पारी को 155 रन तक पहुंचाया था। गुजरात की बल्लेबाजी शुरुआत से ही डगमगाती थी, उन्होंने 20 ओवर में 8 विकेट गवाए। 156 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी की शुरुआत जोरदार रही। दूसरी पारी में 2 ओवर बाद ही आरसीबी का स्कोर बिना किसी नुकसान के 23 रन था। तीसरे ओवर में विराट कोहली ने भी हाथ खोले और सिराज के खिलाफ 2 चौके स्कोर किए। चौथे ओवर में विराट कोहली ने कसिगो रबाडा को निशाने पर लिया। विराट कोहली ने चौथे ओवर में 3 चौके और 1 छक्का जड़ा। इसके साथ ही 4 ओवर में आरसीबी का स्कोर 50 के पार पहुंच गया। हालांकि सिराज ने 5वें ओवर में अय्यर का विकेट लिया, लेकिन अय्यर ने 16 गेंद में 32 रन की पारी खेलकर आरसीबी को वो शुरुआत दिला दी थी जिसकी उसे लगातार दूसरी बार खिताब जीतने के लिए जरूरत थी। विराट कोहली हालांकि किसी दबाव में नजर नहीं आए और पावर प्ले में ही आरसीबी का स्कोर 70 रन पहुंच गया। विराट कोहली के साथ कप्तान रजत पाटीदार ने आरसीबी की जीत की पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर राशिद खान ने पाटीदार को आउट कर दिया। राशिद खान ने 9वें ओवर में कमाल करते हुए कृणाल पंड्या का विकेट भी ले लिया, लेकिन विराट एक छोर पर मजबूती से टिके रहे और आरसीबी का स्कोर 10 ओवर में ही 100 रन तक पहुंच गया। टिम डेविड और विराट कोहली के बीच 5वें विकेट के लिए 41 रनों की पार्टनरशिप हुई। टिम डेविड ने 17 बॉल पर 24 रन की पारी खेली। लगातार गिरते विकेटों के बीच विराट कोहली क्रीज पर डटे रहे और आरसीबी को दूसरी बार चैंपियन बनाकर ही ड्रेसिंग रूम वापस लौटे। गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी की बात करें तो जीटी की शुरुआत अच्छी नहीं रही। क्वालिफायर 2 में जीटी की जीत के हीरो रहे शुभमन गिल और साई सुदर्शन फाइनल में कोई कमाल नहीं दिखा पाए। जॉश हेजलवुड ने 3रे ओवर में गिल का विकेट लिया, जबकि 4थे ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने साई को आउट कर दिया। गिल ने 10 और साई ने 12 रन बनाए। जीटी को फाइनल में पहुंचाने में इन दोनों बल्लेबाजों की अहम भूमिका रही थी। शुभमन गिल और साई के नाम इस सीजन में 700 से ज्यादा रन है। जीटी ने पावर प्ले में 2 विकेट गवाकर 45 रन ही बनाए। रनों की धीमी रफ्तार के दबाव में जॉस बटलर भी कृणाल पंड्या की गेंद पर स्टंप आउट हो गए। गुजरात टाइटंस की पहली पारी का छक्का 13वें ओवर में आया था। आरसीबी के गेंदबाजों ने जीटी पर लगातार दबाव बनाए रखा। हालांकि वॉशिंगटन सुंदर ने 37 गेंदों में 50 रन की पारी खेली और जीटी के स्कोर को 155 रनों तक पहुंचाया। फाइनल से पहले ये दोनों टीमें क्वालिफायर 1 में आमने सामने आई थी, जिसमें आरसीबी ने जीत हासिल कर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं गुजरात टाइटंस ने क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। नाबाद 75 रन बनाने वाले विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। अब बात बाकी अवार्ड्स की। राजस्थान रॉयल्स के ओपनर बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को सबसे ज्यादा 776 रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप, उसके बाद इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड, 237 स्ट्राइक रेट के लिए सुपर स्ट्राइकर ऑफ द ईयर का अवार्ड और सबसे ज्यादा 72 छक्के लगाने के लिए भी अवार्ड मिला। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड भी वैभव सूर्यवंशी को ही मिला। कसिगो रबाडा को सबसे ज्यादा 29 विकेट लेने के लिए पर्पल कैप मिला। साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा 75 चौके लगाने के लिए अवार्ड मिला। वहीं मोहम्मद सिराज को सबसे ज्यादा 100

0: 172 डॉट बॉल फेंकने का अवार्ड मिला। पंजाब किंग्स को फेयर प्ले अवार्ड मिला। केकेआर के मनीष पांडे को कैच ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला।
1: कुछ एक मैचिस विंस कैचिस ते सारी गल्लां बातां दे नाल होया जी ते सवेल जी तुसीं सोनी लिया वी किस तरीके नाल वैभव सूर्यवंशी जिहड़ा जी मुंडा
2: हां जी
1: सारियां दीआं नजरां दे विच हीरो बन गया।
2: बिल्कुल
1: इन्ने 72 छक्के मारे जी उन्हें पूरे टूरनामेंट दे विच ते जदों उन्हें यह कहा सीगा वी मैं बुमराह नूं सिक्स मारना पहली बॉल ते उदों मजाक जिहा लगन लगा सी वी की बकवास गल है वी एडा छोटा बच्चा इदां दी गल करदा बट उन्हें वो करके दिखाया। एक नहीं मैंने लगता दो सिक्स मारे से उन्हें उस
3: हाँ जी सब नु अदाब सत श्री अकाल लिस्टर्स नु और आज आईपीएल दा फाइनल भी हो गया और असी सूर्यवंशी दी गल कर रहे हैं। हाँ जी सूर्यवंशी ने जो उन्होंने कहा सी भी इस सीजन च तुहाडा की मतलब कि एम की है
1: जी
3: ते नाल ही उन्हें कहा कि मैं जड़ा ना बुमराह नु जड़ा ना छक्का मारना और पहली बॉल ते उसने फिर बुमराह ते भी कैमरा मारा ते बुमराह भी एकदम मुस्कुराहट च उन्हें थोड़ा कह गया किस तरह हो सकता है सोचा तो दिल च ही होना ते बट उन्हें करके दिखाया और तुसी सही कह रहे हो पहले गेंद ते पहले छक्का मारा उस बाद थोड़ा शॉर्ट पिच गेंद किया फिर उसके लगते छक्का मारता।
1: पर कल ते परसों दो मैच ओदी मैं हाईलाइट देखी हां जिस तरीके ना खेल रहा है ऐसा लगता है पागल हो चुका बस मारने मारना और 96 ते आउट होया कल ते मैच ते नहीं जित पाए बट दूजे पासे शुभमन गिल ने जिहड़ा एक तरीके नाल सैमीफाइनल कह लो जां जिहड़ा लास्ट मैच सीगा इहनां दा उहदे विच 13 चौके मारे जां 11 चौके ते 2 सिक्स मारे हालांकि उह छक्कियां वाली इनिंग ते नहीं सीगी जिद्दां आईपीएल च खेली जांदी है बट वैरी कैलकुलेटड ते वधिया तरीके दी बैटिंग उहने करके ते अपनी टीम नूं इत्थे लिआंदा अज क्योंकि उह एड्डी वधिया नहीं सीगे जिहदे करके अज फिर ठुस हो गया इहनां दा कम्म
3: डे मतलब अगर दिन है पांच आउट करोगे छे आउट करोगे अगर दिन है सौ करोगे
1: जी। सो इस तरीके ओवरऑल आईपीएल हो निबड़िया वैसे काफी इनफॉरमेशन तुहानू सुनाती आपां ऑलरेडी क्योंकि विराट कोहली दी फाइनल दे विच भी क्योंकि वड्डे प्लेयर जिहड़े ने ओह मैच दे वधिया लेवल दे उत्ते हमेशा ही चलदे आ
3: जी। बिल्कुल हां जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो
1: उन्होंने अपने आप नूं दस्सता भी मैनूं क्यों किंग कोहली क्यों कहिंदे
3: नहीं
1: क्योंकि मैं इत्थे भावें इनिंग 100 तक पहुंचे ना पहुंचे पर विनिंग वाली इनिंग होनी चाहिए।
3: बिल्कुल ऑफ कोर्स
1: उन्होंने एड्डी वधिया इनिंग खेली जी।
3: नहीं मैं समझना कि विराट कोहली सदियां च इहो जिहे प्लेयर पैदा होंदे ने और जिस तरह ब्रायन लारा वगैरह वड्डे प्लेयर ने यू नो ते विराट कोहली का भी एक बहुत ही महान और वड्डे प्लेयर जो शुमार हुंदा और एहो जे प्लेयर्स और बहुत ही देर मुद्दत बाद ही किसी भी कंट्री मतलब के पैदा हुंदे ने और वी शुड रिस्पेक्ट हिम और मेरा ख्याल है जिनों दे उन्होंने अपने अंदर पिछले कोई मैं देखे कोई 8-10 साल तो इन्नी हम्बलनेस अपने अंदर ले आंदी है वो अग्रेसिवनेस जरा ठीक है थोड़ा बहुत है लेकिन जरा बहुत ज्यादा सी उन्होंने खत्म करके अपने बहुत ही हम्बल फिर अपनी ट्रेनिंग हार्डवर्किंग यू नो अपनी कॉन्सेंट्रेशन गेम के उत्ते यह सारिया चीजा फिर अपने फिर जो कोचिज ने उन्होंने जो उस्ताद ने पुराने तो पुराने जो उन्होंने कोचिज ने उन्होंने रिस्पैक्ट तो यू नो मेरा ख्याल है यह सब चीजा जो अज इस लैवल ते ले आई हैं कि उन्हों कोई बीट करना उन्होंने लैवल दैट इज वेरी डिफिकल्ट
1: जी। तुसी भी कुछ अपडेट है देखो
3: अपडेट तो बस यही लास्ट टाइम डिस्कस किया पाकिस्तान की सीरीज होम सीरीज हो रही है आस्ट्रेलिया वर्सिज पाकिस्तान ते पहला ओडीआई मैच ही 50 ओवर गेम ओडीआई और पाकिस्तान ने वो जड़ा वो 5 विकेट तो जीत लिता ठीक है अजे 45 बॉल्स लेफ्ट थे आस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की लेकिन दाहर वरना अच्छा कुछ पेश नहीं कर सके खेल 200 रन किए उन्होंने तो उस मैट शॉट जो ओपनर से उन्होंने 55 रन किए 76 बॉल से 6 चौके लगाए थे उन्होंने जोश एंजलिस जो कैप्टन ने उन्होंने सिर्फ 13 रन किए थे लविशन जो बहुत ही अच्छे प्लेयर माने जाते हैं वह भी 0 से आउट हो गए ग्रीन जो थे वह भी 0 से आउट हो गए और थलो रैनशाह जो ने ऑलराउंडर ने उन्होंने 61 रन किए 63 बॉल से एक छक्का भी लगाया तो वह बाकी सारे जड़े ने वैसे ही जल्दी आउट हो गए थलो टेल तो पाकिस्तान को एडवांटेज मिला कि चलो 200 रन ने उन्होंने वास्ते करना तो चाहिए लेकिन उन्होंने कर भी लिता ते पाकिस्तान वालों जी परफॉर्मेंस की बैटिंग फरहान जो 28 रन किए 28 और मां सदाकत जो उन्होंने 8 रन किए ओनली फिर बाबर आजम जहर ओडीआई खेडते पे ने बाबर आजम 94 बॉल्स खेड गए 69 रन की इनिंग खेडी जिस 4 चौके और एक छक्का शामिल सी और गाजी गौरी जड़े ने वो नवे विकेट नहीं गाजी गौरी हाँ जी विकेट कीपर आए ने नवे रिजवान वगैरह की जगह